मिल संगत गुण प्रगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भाग हीन जम पास जो सतगुर शरण संत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तोर मस्तक लिखिया लिखास तन तन सतसंगत जित हर रस पाया मिल नान मिल जन नानक नाम प्रगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित्वै उद्दम जा आहर हर जीओ परया सैल पत्थर में जंतु पाए ताकार जिकागे कर तरया

सिग्री श्रेष्ठ दिखाए चंभव आदिवा स्वरूप स्वंभव। आप रक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख्य संगरो दुष्ट जिते उठवत पाता सगल मलेश करो रणकाता।

सुने गोंग जो जाए सुरस ना पावे, सुने मूड चित लाए चतरता आवे। दुख दर्द पौ निकट ना तिन्नर के रहे, ओ जा की एक बार चौपे को कह। चौपे सम्मन सत्रह सहस पुण जय अर्ध सहस पुण तीन कहे जय। पादरो सुधी अष्टम रविवारा, तीर स्तद्रव ग्रंथ सधारा।

अपना जान मुझे प्रत परिया चुन चुन सदर हमारे मरिया देग तेग जग में दो चल राख मोय उन्न दल।

अपना जान करो प्रतिपारा तुम साय मैं किंकर दारा दा जान दे हाथ बारो हमरे सब वैरियन संगारो।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए, तिस साहिब की टेक नानक मने माए। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

हे गुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन पितर हजूर जुड़ बैठी सात संगत जी विभागी हो आप जी संत दवाना च हाजरी भर रहे हो। आओ अगला प्रोग्राम सतकार जो भाई साहब जसविंदर सिंह जंडी जी आप जी सरवण करवाएंगे, उन्होंने पासों प्यार से सरवण करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भाई जगतार सिंह भाई साहब

0: इतनी सेवा प्रवान करनी जी। अगला प्रोग्राम पाठ सत्संग करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा
1: वाहेगुरु जी की फतेह। धन्यवादी हाँ सत्कार योग ज्ञानी गुरप्रीत सिंह जी मुख सेवादार गुरद्वारा साहब फ्रीमाउंट, ज्ञानी जगतार सिंह जी, ज्ञानी जजार सिंह जी जिन्हां ने आरती कीर्तन अते गुरु जी की महाराज की बाणी शब्द कीर्तन आप संगत नूं सरवण कराया, इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिवें जून का ये महीना चल रहा है, ये शहीदी हफ्ता गुरद्वारा साहब फ्रीमाउंट विखे ये जो आप सारे शहीदों नूं याद कर रहे हैं, आप संगतां नूं पता है अनाउंसमेंट करते आ रहे हैं कि धन धन गुरु अर्जन देव जी पातशाह की शहादत 1984 दे दरबार साहब ते अटैक दे कल्लूकारे दे जो शहीद सिंह वा उन्हां दी याद विच सैन फ्रांसिस्को विखे ये 14वीं जो पातशाही रैली नगर कीर्तन कढ रहे हैं, ते आप संगतां दा सहयोग चाहीदा अते गुरद्वारा साहब बाकी जिन्ने भी आ कमेटियां अते जथेबंदियां ये रल के एक ये प्रोग्राम आ जिहड़ा इत्थे वख वख गुरद्वारियां च अपने अपने नगर कीर्तन करदे आ, पर ये जो प्रोग्राम आ ये सारे गुरद्वारे अते जो प्रबंध जथेबंदियां सारे रल के ये जो प्रोग्राम करदे आ। बस चढ़ के आओ, गुरद्वारा साहिबाना तो बसा चलनियाँ, अज टक शो भी होया सी, सारी संगत नूं बेनती कीती आ, वख वख गुरद्वारियां दे प्रबंधक टक शो ते पंजाबी रेडियो USA ते बोले आ। सो मैं बेनती करदा कि ये बहुत साडे लई इतिहासक अते आपां ये जो दिन वा ये मनाउणा, क्योंकि मैं एक घटना तुहानूं दसणी आ। जदों अज दे दिन 4 जून नूं कुछ गुरु दे प्यारे सिंह लड़ार जून नूं कुछ गुरु दे प्यारे सिंह लड़दे लड़दे संत बाबा जरनैल सिंह नूं कहिंदे कि संत जी कुछ छकण नूं दिल करदा, भुख लगी हुई आ। ते संत जी मोहरिओं मुस्कुरा के कहिंदे आ कि गुरु दे प्यारे ओ सिंह हुण 10वें पातशाह को जा के आपां सारे छकांगे। ते कहिंदे कि उस टाइम वो गुरु दे प्यारे सिंह उन्हां दे रफलां जो अपने उन्हां दे हथियार सी उन्हां दे मूँह उसे टाइम दुश्मन वल नूं हो गए, ते लड़दे लड़दे ने उन्हां ने शहादतां प्राप्त कीतियां। अज 4

सतगुर प्रसाद जय कर कीरत आखिया करते का हुए बिचारो तित कर गावो सोहिला सिवरिहो सृजनहारो तुम गाव हो मेरे निरपौ का सोहिला हुआरी जिस सोहिले सदा सुख हुए रहाओ नित नित जियड़े संभालियन देखेगा देवन हार तेरे दान कीमत ना पवै तस्ताते कौन सुमार संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सजन असिसड़िया ज्यो हो वैसा हिब सिउ मेल कर करे हो पहुचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिय नानक से दे आवन राग आसा महला पहला छे घर छे गुरु छे उपदेश गुर गुर एको वेसनेक बाबा जय कर करते की।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

दुख लथा। नाम की महिमा संत रिद वसै, संत प्रताप दुरद सब नसै, संत का संग विभागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है। नाम तुल कछवर न होए, नान गुरुमुख नाम पावे, जन को श्लोक बहु सात्र बहु सिमृति, वेखे सर्ब टर होल, पुरुष नाही हर हरे, नानक नाम अमोल अष्टपदी। जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खाट सात्र सिमृत वख्यान, जोग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया, सगल त्याग ब्रह्म दे फिरिया, अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान हो मैं बहु रतना, शरीर कटाए हूं मैं कर राती, वर्त नेम कर बहु पाती, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरुमुख नाम जपिए कबार। नौ खंड पृथ्वी फिर तिर जीवे, महा उदाहत पीसर थीवे, अग्न माहे होमत प्राण, कनक असव है वर भूमदान, न्योली कर्म कर बहु आसन, जैन मार्ग संजमत साधन, निमख निमख कर

तै अभिमान। आपस कहो जो जाने नीचा सो गणिये सब ते ऊंचा जाका मन होए सगल किरीना हर हर नाम तिन कर करतीना माने अपने दे बुरा मिटाना पेखे सगल शरीर साजना सुख दुख जन सम दृष्टे ता नानक पाप नहीं ले पा निरतन कहो तन तेरो नाव निथावे को नाव तेरा थाव निमाने को प्रभ तेरो मान सगल कटाको दे बहुदान करण कराम हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी खदमित जान हो आपे आपन संग आप प्रभ राते तुमरी उस्त तुम ते होए नान कबर न जान सकोए सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया सासंग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्दम मह उद्दम पला हर का नाम जप हो जी सदा सगल बानी मह अमृत बानी हर को जास सुन रसन बखानी सगल थान ते ओह उत्तम थान नानक देह घट वसे हर नाम सलोक निर्गुण यार एनिया सो प्रभ सदा संभाल जिनकी आ तिस चीत राख नानक निभी नाल अष्टपदी रमैया।

सुख सूद बिरद पया ऊपर साग सैन मुखिया पिया बैठ कव दैन एहो निर्गुण गुण कछु ना बूझे बख्श ले हो तव नानक सीजे देह प्रसाद धारु पर सुख बस है सत प्रात मीत बंता संग हस है जिह प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पाव के अमुला जिह प्रसाद भोगे सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव करण नेत्र रसना तिसे ते आंग अवर संग रचना से दोख मूड अंत व्यापे नानक काढ़ ले हो प्रव्यापे आदे अंत जो राखन हार तिस स्यों प्रीत न करे गवार जाकी सेवा नाव निध पावे ता से मूड़ा मन नहीं लावे

सुरभंग कह पिंगल परबत पर पव नहीं हो तू हांस गवन करता हर करना मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरे संग सहाई सो आवे न चीत जो बैराई तास्यो प्रीत बरुआ के गृह भीतर बसे अंध केल माया रंग रसे रिव कर मान मणि प्रतीत काल नावे मूढ़े चीत।

करे। अपनी प्रतीत आप ही खोवे और उसका विश्वास न होवे। जिसकी वस्त तिसे आगे राखे प्रभु की आज्ञा माने। माथे उसते चौगन करे निहाल। नानक साहिब सदा दयाल। अनक पात माया के हेत सर पर होवत जाने अनेत।

अबर लुभावे देह प्रसाद सुख से सोई दे मन आठ पहर ता का जास गावी जय देह प्रसाद सब को माने मुखता को जास रसन बखाने देह प्रसाद तिर रसता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगह मान पाव है नानक पात से ती घर जावे जेह प्रसाद रो कंचन देही लेव लाभ हो तिह राम स्नेही जेह प्रसाद रावो ला रहत मन सुख पाव हर हर जास कहत जेह प्रसाद रे सगल सिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभता के जेह प्रसाद रिको न बहु जे मन साह साह सिमरह प्रभु चे जेह प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ताकी भक्त करे जेह

सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जिह प्रसाद तेरी पत रह गुर प्रसाद नानक जस कह जिह प्रसाद सुनह करनाद जिह प्रसाद पेखे बिस्माद जिह प्रसाद बोलह अमृत रसना जिह प्रसाद सुख सहने बसना जिह प्रसाद हत कर चल है जिह प्रसाद संपूर्ण फल है जिह प्रसाद परम गत पावे जिह प्रसाद सुख सहज समावे ऐसा प्रभ त्याग बरकत लागहु गुर प्रसाद नानक मन जागहु जिह प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल न मनो विसार जिह प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर तू ताको जाव जिह प्रसाद तेरे कार्ज पूरे तिस हे जान मन

का सुदानमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता ब्रह्म ज्ञानी नाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब प्रभात ब्रह्म ज्ञानी का सगल कार ब्रह्म ज्ञानी आवृंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बणी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनि श्लोक

प्रकार स्प्रदि कई कोट होए पुजारी, कई कोट अचार व्यवहारी, कई कोट पहदीथवासी, कई कोट बन ब्रह्म उदासी,

भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी, कई कोट जन्म जीवे मरह, कई कोट बोजोनी।

है सगले बृथारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार अनक जतन कर आत्म नहीं द्रव हर दर गह कहो कैसे गवे आपको जो पला कहावे तिसे।

कर हाथ, मानस जतन करत बहुपात, तिसके करत बिरथे जात, मारे राखे वरन कोय, सर्व जिया कर आखा सोय, काहे सोच कर हिरे प्राणी, जप नानक प्रभ लक्ष्मी दानी, बार बार बार प्रभ जपिए, पी अमृत हो मन तन त्रपिए, नाम रतन जन गुरुमुख पाया, तिसके शबर नाई दृष्टाया, नाम धन नाम रूप रंग नाम सुखर नाम कसंग नाम रास जो जन तृप्ताने, मन तन नामे नाम समाने, उठ

मन मेरे तिन की ओट लेह, मन तन अपना तिन जन देह। जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्ब थोका दाता। तिस की सरन सर्व सुख पावे, तिस कै दर्श सब पाप मिटावे। अमृत सियाण सगली छाड़, तिस जन की दू सेवा लाग।

रंग राता। ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म एक आप नहीं काश परम सहस सियान पलाया न जाइए नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाइए।

उस पुरख का नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुणता साण पर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक दे मोह माया के संग न ले मन में राखे हर हरेक अंधकार दीपक प्रगासे नानक पर मोह दुख तै तेरासे तब तुमाए ठान वरताई अंध पह दुख नाठे पाही जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेश पहुच।

भक्त बिना बहु डूबे सियाने हर की भक्त करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल विख जाहे आव जप हो अवरा नाम जपाव सुनत कहत रहत गत पाव सार भूत सत हर को नाव सह सुपाय नानक गुण गाव गुण गावत तेरी उतर समैल बिनस जाए हाँ मैं बिख फैल होहे अचिंत बसे सुख नाल सास ग्रास हर नाम संभाल छाड़ सियाण सगली मना सा संग पाव सच तना हर पूंजी संच करो बेहारी हां सुख दरगह जयकार सर्व निरंतर एको देह कहो नानक जा कै महत कलेख एको जाप एको साल आहे एक सिमर एको मन आहे एक के गुण गाव अनंत मन तन जाप एक भगवंत

तृप्ताने पूर्ण पुरुष नहीं डोलाने सुबर परे प्रेम रास रंग विजय चाओ साध के संग परे सरनान सब त्याग अंतर प्रगा संदन ले बिलांग भागी जप्या प्रभु सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक

अनाथनाथ गोविंद गोपाल सर्व घटा करत प्रदपाल आदि पुरख कारण करतार भगत नाके प्राण धार जो जो जप है सो होए प्रीत भगत पाहे लावे।

मरण कहो कहां विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कह किस होए। जब अब गात गोचर प्रभ का तब चित्र गुप्त केस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन गोचर गाधे तब कौन छुटे कौन बंधन।

0: जन आवे हर प्रवचीत जन मरण ताका दुख निवारे दुलाभ देहत दुकारे उदारे निर्मल सोभाए मृता की बाणी एक ना मन मान समानी दुख रोग बिन से पह परम साध नाम निर्मल ताके कर्म सब त्यों ताकी शोभा बनी नानक नाम सुखमनी सब त्यों ताकी शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुखमनी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख

असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंग अलबल त्या कमाहे असंग पापी पाप कर जाहे असंग कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेश।

अपेय है, अजीत है, अपीत है, त्रमान है, निदान है, त्रवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अगंज है, अभंज है, अजूज है, अचंज है, अमीक है, अर्फीक है, अतंध है, अबंध है, निर्भूज है, सूज है, अकाल है, अजाल है, अलाव है, अजा है, अनंत है, महंत है, अलीक है, निरशरीक है, निर्लंब है, असंभ है, अगम है, अजाम है, अभूत है, अशूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निधान है, अनेक है, फिरेक है, पुजंग, प्रयाद, छंद, नमो सर्वमाने समस्ति निधाने, नमो देव देवे अपेखी अभेवे, नमो काल काले, नमो सर्वपाले, नमो सर्वगौणे, नमो सर्वपौणे अनंगी अनाथेन्द्र संगी परमाते, नमो भान भाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो भान भाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत्य नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे प्रभंगी परमाते समस्ति विभूते कलंक मनाने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजे स्वरंग परम रूपे, नमो जोग जोगे स्वरंग परम सिद्धे, नमो राज राजे स्वरंग परम वृद्धे, नमो शस्त्र पाने, नमो अस्त्र माने, नमो पूर्व परम ज्ञाता, नमो लोक माता अपेखीय परमीय भोगीय भुगते, नमो जोग जोगे स्वरंग परम जुगते, नमो रित नारायण क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रे देव धर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो शाह नमो पूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमो संसनाने, नमो मंत्र मंत्र, नमो जंत्र जंत्र, नमो इष्ट इष्ट, नमो तंत्र तंत्र, सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणाशी नृपे रूपे समस्त निवासी, सदा सिद्धा बुद्धा बृहद्कर्ता अदो वृद अर्धं आगं ओघर्ता, परं परं परमेश्वरं प्रोषपालं सदा सर्वदा सिद्धाता दयालं अशेदी अभेदी अनामं अकामं समस्तोपराजी समस्तस्तामं तेरा जोर चाचरी छंद, जले है, थले है, अपीत है, अपेह है, प्रभु है, अजू है, अदेश है, पेश है, भुजंग प्रयाद छंद, अगाधे अबाधे अनंति स्वरूपे, नमो सर्वमाने समस्ते निधाने, नमास्तुमंग नरनाथे, नमास्तुमंग परमाथे, नमास्तुमंग गंजे, नमास्तुमंग पंजे, नमास्तुमंग काले, नमास्तुमंग पाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्वपेशे, नमो राजराजे, नमो साजे, नमो शाहे, नमो माह माहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोखे, नमो सुख सुखे, नमो सर्वरोगे, नमो सर्वभोगे, नमो सर्वजीतंग, नमो सर्वपीतंग, नमो सर्वज्ञानंग, नमो परमतानंग, नमो नमो सर्वमंत्रंग, नमो सर्वजंत्र, नमो सर्वदृसंग, नमो सर्वग्रसंग, नमो सर्वरंगे तर्भंगी अनंगे, नमो जीव जीवंग, नमो बीज बीजे अखिजे बीजे समसंग प्रसिजे कृपालंग स्वरूपे कुर कर्मंग प्रणासी सदा सर्वदा सिद्धंग निवासी, चरपट छंद अप्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अल्लाह कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने।

भक्त विरक्त नाश प्रकाश नचिंत सुनंत अलिख दिख लेख पेख अटाह अगाह असंभ अगम अनिल अनाद अनत सुनत अजात।

प्राणं सर्वं तराणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता रसावल शांत त्व प्रसाद नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्मं परमाते सदा सर्वसाथे राजस्वरूपेन्द्रवाद विभूते अनंगी अनामे द्रभंगी दृगामे द्रभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पौत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न माता न जात न पात नरसाकं श्रीकं मितोमिक सदैवं प्रवाहे अजाहे अजाहे भगवती शांत त्व प्रसाद के जाहर जहूरे के

सबसे बेअंत अनुभव नासत तरतुर आसादन बाह एक सदाह ओंकार आद कथनीय नाद खलखंड ख्याल गुरबर काल कर कर प्रणाम चिचर नाम अनशुज गात अजुजना बात अन चंज गात अनरंज बात अन टूट भंडार अन ठट अपार आठ धर्म अत ठीठ कर्म अनमरण आनंदाता महंधर बोल मना शांत त्व प्रसाद करुणालय है अर्काल है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है त्रित के तरण है जाके करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंग कर है सर्वपाश है सर्वनाश है करुणाकर है विश्वंबर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है परते पर है करुणाकर है आ जपा जप है आ थपा थप है आ कृता कृत अमृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है आ कृता कृत है धरणी तृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है कृता कृत है अमृता अमृत है अजवा कृत है अमृता अमृत है नर नायक है खल गायक है विश्वंबर है करुणालय है नृप नायक है सर्पायक है पपंजन है अर्गंजन है रवतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वा कृत है कर्ता कर है हर्ता हर है परमात्मा है सर्वात्म है आत्म बस है जसके जासे भुजंग प्रयाद छंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज नमो इंद्र इंद्र नमो अंधकार नमो तेज तेज नमो बृंद बृंदे

सगरी षष्ठी खाय अचंबव्या जुगा स्वरूप स्वयं भव अभ्रच्छा मेरी तुम करो सिख उबार आसिख संगरो दुष्ट जिते उठवा तुत पाता सकल मलेश करो रण गाता जे आस तो जिताब शरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे पुरख जमन भग परे तिहारे तिनके तुम संकट सबटारे जो गल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट न आए अर्चा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहारो ताके ताप तनक में हरो रेत सिद्ध कर्मो सब हो दुष्ट जा सब सके ना कोई एक बार जिंद में संभारा काल भारत ताहे उबारा

सुनय मूर्छित लाए चतुर्था भई दुख दर पाओ निकटना तिन्नर घेर है ओजो जाकी एक बार चौपाई क्यों कह चौपाई समत सत्रह सहस पणजा अर्थ सहस पुनतीन कह जय भाद्रव सुधी अष्टमी रवारा तीर सदर्भ ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते गुआक तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण गुरान अनेक अहमद एक रमान्यो सिमर सास

संत साजन भय सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भर पूरे बिनमंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिस रात दोय दाई दाया खेलै सगल जगत।

सोने तख्तां ते प्रकाश मन हो के दर्शन दीदार बख्शे हन। आप जीआं दा कोटान कोट धन्नवाद शुकराना है। अमृत वेले तो आप दी पावन हजूरी विच सुखमनी साहब जी दे पाठ पांच बाणियां दे नेतनेम आसा जी दी वार दे कीर्तन होए उपरंत सच्चे पातशाह जी आप जी वल्लों बख्श मुख

दर्शन देव अपना ऐसी बखस करीजै पंत नानक भरम पाट खूले गुर प्रसादी जाने आ साची लिव लागी है पीतर सतगुर स्यों मन मान्या तनासरी।

तुम्हार सर्वर अत गाहा हम लह न सके अंत माती तू पर परम पर स्वामी मैं तो जानू आपन गाती।

का। गुर की टहल गुरु की सेवा, गुर की आज्ञा पाणी, कहो नानक जिन जमते काडे तिस गुर कह गुरबाणी। तनासरी महला पंजवा। जिसका तन मन तन सब तिसका, सोई सुगड़ सजानी तिन्ही सुनया, दुख सुख मेरा तो बिदनी की खटानी।

भोग लोभ में सूकै हर हर नाम पार मोला अमृत एक निधाना सुख सहज आनंद संतन कै नान गुर ते जाना तनासरी महला पंजवां।

शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए बस्या जन इच्छा स

सुनो बड भाग्य सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप तेरे सुने सच्ची वाणी संत साजन पै सरस पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कह।

जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहब जीओ एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूने सह भंगुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच

हरके जन सदगुरु सा प्रकाश बिनु करो गुरु पास हम कीरे करम सदगुरु सरनाई कर दया नाम परगास मेरे मीत गुरुदेव मोको राम नाम परगास गुरमत नाम रा प्राण सखाई हर कीरत अमरे रह रास राहौ अर्जुन के बड भाग वडेरे जन हर हर सरदा हर प्यास हर नाम मिले त्रिवता सह मिल संगत गुण परगास जन हर हर हर रस नाम ना पाया ते पाग हिण जम पास जो सदगुरु शरण संगत नहीं आए त्रै जीवास जन हर जन सदगुरु संगत पाए तन धर्मस्तक लिखिया लिखास धन धन सतसंगत जथर रस पाया मिल जन नानक नाम परगास राग गुजरे महला पंजमा का हेरे मचित वै उदम जा आहर हर जियो परया सैर पत्र में जंतो पाए ता कर जगा के कर तरिया मेरे माधव जे सत संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सुखे काष्ट हरिया रहाओ जनन पिता लो सतवनता कोई न किसकी तरिया सिर सिर रिजक समा है ठाकुर का है मान पाओ करया उड़े उड़े आवे सैको सद पाछे बचरे चरिया तन कवन खलावे कवन चगावे मन में सिमरन करया सब ने दान दास दान

सौपुरख निरंजन हरा पुरख निरंजन हर गमा गमा पारा सब त्यावह सब त्यावह तुझे हर सच्चे सिर दिनहारा सब जी तुम्हारे जी तू दिया कार दारा हर त्याव संतो जी सब दुख विसारण हरा हरियापे ठाकुर हरियापे सेवक जी क्या नारे जंत विचारा तू गड़ गड़े अंतर सर्व निरंतर दी हरे को वृक्ष संभाड़ा एकदा तेग पैखारी जी सब तेरे चोज बिनाड़ा तू आपे दाता आपे भगता दी हो तो मैंने अवरना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख खाना जो सेवा है जो सेवा है तो जी जन नानी तिन कुर्बाना हर त्याव है तो जी से जंग में सुखवासी से मुकत से मुक्त पाए जन हर त्यादि तिन तुटी दम की भासी जिन निरपो जना निरपो त्याया जी तिनका पाओ सब गवासी जिन सेव्या जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरे भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाह तुझी हर अनुक अनंता तेरी अनक कर हर पूजा जी तब ताप है जप है बेअंता तेरे अनेक प्रणाम सिमरत सास जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत बल जन नानी जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आज प्रख्या परम्पर करता जी तू देवड़े अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नेचल करता सोई तुझे आपे पावे सोई वरता जी तू आपे क्रह सो होई तुझे आपे सिर सब उपाय जी तुद आपे सिर सब गोई जन नाने गुण गावे करते के जी जो सबसे का जान होई आसा महला चौथा तू करता सचे आर मन दसाई जो तो पावे सोई थिसी जो तू दे सोई हो पाई रहो सब तेरी तो सब नी त्याया जिसनु कृपा करे तन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुगवाया तुदा बिछुड़िया आप मिलाया तुंदरी आओ सब तुझी माए तुद बिंदु जा कोई ना जी जन सब तेरा खेल जोग मिल बिछड़िया संजोगी मेल जिसनु तू जाना है सोई धन जाने हर गुण सदी आख खाना जिन हर से व्यतन सुख पाया स दे हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बंधु जाबर न कोए तू कर कर वेखा जाना है सोए धन नान गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तेसर वरडे पहले निवासा पानी पावत नहीं किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबी अले मन एक नचे मूड बना

पंजमा पै प्राप्त मन खुदय हरिया गोविंद मृण किया तेरी बरियावर कायत्र तैरना कामर सात संग पै केवल नाम सिरंजा लोप जल तरण के जन्म बिरथा दातन माया के राहौ जप तब संयम तरम ना कमाया सेवा साधना जान्या हर राया कौ नानी कम नीच कर्मा शरण

साकत रसाद न जाने तेन अंतरों में खंडा है ज्यो ज्यो चला सुबह उपावे जम खालसा है सिर डंडा है हर जन हरा नाम समान है दो जन मन पव खंडा है बिना शिव गुपाया परमेश्वर वो शुभ खंड।

बिनंती सुन हमर मीता संत डाल की बेला यहाँ खाट चलो हरलाहा आगे बसन सोहेला और कटा दिन सुरैनारे मन गुरु मिलखा सवारे रहाओ एव संसार विकार संसय मैं तरयो ब्रह्म ज्ञानी

ने शब्द बना सीए काम क्रोध परे हम अपराधी क्या मोले बोले नहा गम गुण ना सेवा साधी डूबते पत में अल्लाह तुम अपे सच नाम बना सीए ना को करे ना करने जोगा पे करे करावे सो होएगा पे बख्श ले सुपाए सदी नाम निवासी है एत तन तत्ती शब्द बीज अपारा हर सच सिद्धि बन जपारा सच तन जम्या तो उठना आवे अंतर नाम निवासी है हर जीव गुण गारे नो गुण कीजे आपे बख्श ले नाम दीजे गुरमोह सो पद पाए कित नाम निवासी है अंतर हर तन समझना होई गुरु प्रसादी बूझे कोई गुरमोह सो तन पाए सदी नाम निवासी है अनुभव परम बुलाई माया मोह सुध नकाई मन मुखन दे कृष्ण सूजे गुरमत नाम प्रकाशी है हम मन मुखे माया सूते अपना कर ना संभाले अंत बिगूते पर निंदा करे बो चिंता जाले दुख दुख निवासी है आपे करता कार करावे आपे कर्म दे बजाए नानक नाम मृदे मन निर्मल नामे नाम निवासी है नारू महला तीजा एको से भी सतर साचा दूजे लागा सब जग काचा गुरमत सदा सच सलाई सच ही सच भतीजे है तेरे गुण गो बहुते मैं एक न जाता आपे लाए ले जग जीवन दाता आपे बख्शे देव डे गुरमते मन पीजे है माया लहर शब्द निवारी मन मलहोमे मारी सबजे सजे गुण गावे रंग राता रसना राम रिवीजे है मेरे मेरी करत बिहानी मनुख न बूझे फिर आनी जम काल कड़ी मोत निहाले अंदर आ जा सीजे अंत लो करे नी बूझे सिर पर जमकाल न सूजे चिक मोन सुहागे आए अंत काल क्या कीजे है जो सच लगे सो तन साची सोए दूजे लागे मनुख रोए दुआ सिरा का खसम आपे आपे गुण में बीजे है गुर के शब्द साजन सोए नाम रसायण मन मोहे माया मोह मैल पतंग न लागे गुरमति हर नाम पीजे सबना विच वरते कसोई गुर प्रसादी प्रगट होई हमें मार सा सुख पाया हर नामे सच मृत पीजे है कबल दुख निवारण हारा गुरमुख से शब्द विचारा सब कुछ आपे आप वरते गुरमुख तन मन पीजे है माया गण जले संसारे गुरमुख ने बड़े शब्द विचारे अंतर सांत सा सुख पाया गुरमति नाम लीजे है इंदर इंद्रासन बैठे जब का पाओ पावे जमना छोड़े बो कर्म कमावे सदगो से भी पेटे दा मुगत पाइये हर रसना पीजे है मन मन को अंतर भगत न होई गुरमुख ज्ञान गुरु भगत सांसुख होई पवित्र पावन साहिब गुण बाणी गुरमत अंतर पीजे है ब्रह्म विष्णु महेश विचारी त्रैगुण बदक मुक्त निरारी गुरमुख ज्ञान एको है जाता अंदर नाम बीजे वेदा वेद पढ़े हर नाम न बुझे माया कारण पड़ पड़ लूजे अंतर मैला ज्ञानी अंदा

मने समाएदा सेवट बाकी जिन सकर पाया बिच हमें बिच मोचकाया मन मल फिर मैं न लागे दस चे सुबह पाएदा आपे करे करावे आपे आपे बेके धापे धापे गुरु सेवा करे प्रभ पावे सच सुन सच सुन लेके पाएदा सरकर्म सचो सच कमावे गुरु निर्मे मैल न लावे नानक नाम रते विचारे नामे नाम समाएदा मारु महला तीजा पेस सुकम सब साजी आपे थापे बाप नवाजी आपे न्यो कर सचा सचे सच मलाएदा काया कोट है कारा माया मोह पसरिया पसारा बिस

야야 자선전지 자선전지 사치가마위 문내물지 할구나가위 예수 베카메 마르타프라파도 호베르지오 메레파야 지수는 부자에서의 부지 할구나가위 안드르 수지 호크메메라 타그라하이 세제에서 지파야 베르카르모호르베르 그네리 마르마르점에 주께 비나페리 베카라타 베카마위 수크나가무파야 보데베 그네 베카다리 벤섭데 홈메 그네나마리 जीतमरेसु मुक्ते पाए सच्चे नाय समाया अज्ञान तृष्णाम इस तने जलाए तिस्जी पूजे जे गुरु सकमाए तन मन सिद्ध क्रोध निवारे हमें मार समाया सच्चा सच सच्ची वड्याई गुरु प्रसादी वेले पाए नानके कहे मनती नामे नाम समाया मारू महला तीजा नदी भगती लेहो मिलाए भगत सलाय सदा लिवलाए तो सुनाई उभरे करते आपे मेल मिलाया पूरे सब भगती सुहाई अंतर सुख तेरे मन पाई मंत्र सच्ची भगती राता सच्चे से जद लाया हमें बिच सद जले हे शरीरा कर्मो वे पेटे गुरपुरा अंतर ज्ञान शब्द बजाय सदगु ते सुख पाया मन गंदा अंध कमाए बहुत संकट जो नी परमाए जमका जेवड़ा कदा अंध काटे अंत बहुत दुख पाया आवण जाना सद नवारे जनाव रखे और धारे गुर के सद मरे मन मारे स्वामे जाए समाया आवण जाने पर जब वो बिन सुख तिरन कोय न हो अंतर ज्योत शब्द दुख सुख पाया ज्योति ज्योत मिलाया पंच तू चित वे बेकारा माया मोह का हे पसारा सुख से मुक्त हो।

वही बिन हर नाम मर जाए। मैं सतगुर सेती पिरहड़ी क्यों गुर बिन जीवा माऊ। मैं गुरबाणी उधार है गुरबाणी लाग रहाओ हर हर नाम रतन है। गुर तुठा देवे माए मैं तर सचे नाम की हर नाम रहा लिवलाए। गुर ज्ञान पदार्थ नाम है हर नाम दे दृढ़ाए। जिस प्राप्त सोल है जो गुरचरणी लागे आए। अकथ कहानी प्रेम की को प्रीतम आखे आए। तिस देवा मन अपना निव निव लागा पाए। सज्जन मेरा एक तू करता पुरख सुजान। सतगुर मीत मलाया मैं सदा सदा तेरा तान। सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए। हो अबनासी पुरख है सब में रहा समाए। राम नाम तन संचया साबत पूंजी दास। नानक दरगे मन्या गुरपूरे साबास। राग सुही अष्टपदियां महला पंजवा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। उर्जरे हो बिखया कै संगा बिने मन व्यापते अनक तुरंगा। मेरे मन अगमे अगोचर कत पाइये पूर्ण परमेश्वर रहा। मोह मगन मैं रहा ब्यापे अत तृष्णा कबू नहीं त्रापै। बसे क्रोध शरीर चंडारा अग्या।

पंच बटवारे मन बच कर्म प्रभ एक त्याए सरफला सोई जन पाए धार अनुग्रह अपना प्रभ कीना केवल नाम भगत रस दीना आदि आद मद अंत प्रभ सोई नानक तिस बिना अवर ना कोई राग सुही महला पंजवा अष्टपदिया घर नौवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जिन डिठिया मन रसी है क्यों पाइये तिन संग जियो संत सज्जन मन मित्र से लाइन प्रभ स्यो रंग जियो तिन स्यो प्रीत न टुटई कबू न हो वै भंग जियो पार ब्रह्म कर दया गुण गावा तेरे नित जियो आए मिलो संत सज्जना।

ओंकार सतगुर प्रसाद मानुको चजी अमनुड़ा मानुको चजी अमावड़ा डोसड़ाए हों क्यों सहो रावण जाओ जियो एक दू एक चुड़न दिया कौन जाने मेरा नाओ जियो जिनी सखी सौ रावे आ से अम्बे चाड़ी है जियो से गुणा मांजना अवनी हों कह जी दो सत्रो जियो क्या गुण तेरे विथरा हों क्या क्या ना तेरा नाओ जियो इकत टोलना बुढ़ा हों सतगुरु बाणे है तेरे जाओ जियो सोना रूपा रंगला मोती तै मानक जियो से वस्तु सह दिती

कह सुनी। मैं दर्शन भूख प्यास गुर शब्दी सौ पाया सच नानक की अरदास। सुही महला पंजवा गुणवंती जो दिसै गुर सिखड़ा तिस निव निव।

पंच मिले सुख पाया, साई वस्त प्राप्त होई जिस सेती मन लाया। अणदिन मेल पया मन मानिया, करमंदर सुहाए पंच शब्द धुन अनहद वाजे, हम घर साजन आए। आव मीत प्यारे मंगल गावो नारे, सच मंगल गावो तां प्रभ भावो सुहिलड़ा जुग चारे। अपने घर आया थान सुहाया, कारज शब्द सुवारे ज्ञान महारस नेत्री अंजन त्रै भवन।

दुख आप पछाणे। प्रभ जैसे अविनाशी एक ओंकार। सतगुर प्रसाद राग सूही संत महला पहला घर चौथा। जिन की आ तिन देखिया जग धंधड़े लाया दान।

मन भावे सोई, गुर की पौड़ी साच की साचा सुख होई। सुख सहज आवे साच भावे, सच की मत क्यों टले। स्नान दान सुग्यान मजन आप अशल, आप अशल्यो क्यों छल। परपंच मोह बिकार थाके, कूड़ कपट ना दोई। मेरा मन राता गुण रवे, मन भावे सोई। साहब

जिन जग ते उपाया आए गया की ना आयो क्यों आवे जाता प्रीतम स्यो मन मान्या हर सेती राता साहेब रंग राता सच की बाता जिन बिंब का कोट उसारिया पंच भू नायक आप सुरंदा जिन सच का पिंड सवारिया हमें अवगण आ रे तू सुन प्यारे तुद पावे सच सो

से ते सूजै गुर सबदी सच जानिया साजन होवन अपने क्यों पर कर जाही साजन राते सच के संगे मन माही मन माहे साजन करे रलिया कर्म धर्म सुभाया अठ सठ तीर्थ पुन पूजा नाम साचा पाया आप साजे थाप वेखे तिसे पाणा पाया साजन रंग रंगी लड़े रंग लाल बनाया।

तिन अन दिन हर गुण गाए। सुन मन पीने सहज सुभाए, जुग मैं राम नाम निस्तारा। गुर ते उपजे शब्द विचारा, गुर शब्द विचारा राम नाम प्यारा। जिस कृपा करे सो पाए, सहजे गुण गावे दिन राती, किल विख सब गवाए।

तारा साजने आए उठे कर माही हर गुण गावे त्रिपते अगाही हर गुण गाए सदा त्रिपतासी फिर पूख ना लागे आए दै दिस पूज होवे हर जन की जो हर हर नाम त्याए नानक हर आपे जोड़ विछोड़े हर बिन को दूजा नाही साजने आए बुठे कर माही। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सूही महला तीजा घर तीजा भगता भगत जना की हर जियो राखे जुग जुग रखदा आया राम सो भगत जो गुरमुख होवे होमें शब्द जलाया राम होमें शब्द जलाया मेरे हर पाया जिस दी साची बाणी सची भगत करे दिन राती गुरमुख आख वखाणी भगता की चाल सची अत निर्मल नाम सच्चा मन पाया नानक भगत सुहै दर साचे जिनी सचो सच कमाया हर भगता की जात पात है भगत हर कै नाम समाने राम हर भगत करे

मीठी लागी। अन दिन भगत करे दिन राती, घर ही मह बैरागी। भगती राते सदा मन निर्मल, हर जियो वेखे सदा नाले। नानक से भगत हर कै दर साचे, अन दिन नाम समाले। मन मुख

सच सोई नानक नाम मिले वडियाई दूजे पाए पत खोई भगतां कै घर कारज साचा हर गुण सदा वखाणे राम भगत खजाना आपे दिया काल कंटक मार समाणे राम काल कंटक मार समाणे हर मन भाणे नाम निधान सच पाया सदा खुट कदे नाने खुटै हर दिया सहज सुपाया हर जन ऊचे सद ही ऊचे गुर कै शब्द सुहाया नानक आपे बख्श मिलाए जुग जुग सोभा पाया सूही महला तीजा शब्द सचे सच सोहेला जिथे सचे का होए विचारो राम होमे सब किलविक काटे साच रखिया और धारे राम सच रखिया और धारे दुत्र तारे फिर भवजल तरन न होई सचा सतगुर सची बाणी जिन सच बखालिया सोई साचे गुण गावे सच सुमावे सच विख सब सोई नानक साचा सैब साची नाई सच निस तारा होई साचे सतगुर साच बुझाया।

गुरमती काट चानन हुआ प्रभ रव रया सब थाई राम प्रभ रव रया सब थाई मन वसाई पूर्व लिखिया पाया सेज सुखाली मेरे प्रभ पाणी सच सिंगार बनाया कामन निर्मल होमे मल खोई गुरमत सच समाई नानके आप मलाई करते नाम नवे निद पाई सुही महला तीजा हर हरे हर गुण गावू हर गुरमुखे पाए राम अनदिनो शब्द रबो अनहद शब्द बजाए राम अनहद शब्द बजाए हर जियो कर आए हर गुण गावो नारी अनदिन भगत करे गुर आगे सा तन कंत प्यारी गुर का शब्द वसिया घट अंतर सेजन शब्द सुहाए नानक तिन घर सद ही सोहला हर कर कृपा घर आए

सुख दाता पाया मोह चुकाया अणदिन नाम संभाले गुर सबदे राता सहजे माता नाम मन वसाई नानक तिन घर सद ही सोहेला जे सतगुर सेव समाए।

तिनके दुख गवाया राम, तिनके दुख गवाया जा हर मन भाया, सदा गावी रंग राते हर के भगत सदा जन निर्मल, जुग जुग सद ही जाते साची भगत करे दर जापे, घर दर सच्चा सोई नानक सच्चा सोईला, सच्ची सच बाणी सब दे ही सुख होई, सुही महला तीजा। जे लोड़े वल वर बालड़िए, जे लोड़े वर बालड़िए गुर चरणी चित लाए राम, सदा हुवे सुहागणी हर जियो मरे ना जाए राम, हर जियो मरे ना जाए गुर के सह सुभाए, सातन कंत प्यारी सा संयम सदा है निर्मल गुर कै शब्द सिंगारी, मेरा प्रभ साचा सद ही साचा, जिने आपे आपे उपाया नानक सदा पिर दावे अपना, जिन गुर चरणी चित लाया पिर पाएड़ा बालड़िए, अनदिन सहजे माती राम गुरमति मन अनद पया, तित तन मैल न राती राम, तित तन मैल न राती हर प्रभ राती, मेरा प्रभ मेल मलाए अनदिन रावे हर प्रभ अपना, विचों आप गवाए गुरमत पाया सहज मिलाया अपने प्रीतम राती, नानक नाम मिले वड्याई प्रभ रावे रंग राती, पिर रावे रंग रातड़िए पिर का मैल तिन पाया राम, सो सहो अत निर्मल दाता जिन विचों आप गवाया राम, विचों मोह चुकाया जाहर पाया हर कामन मन पाणी, अनदिन गुण गावे नित साचे कथे अकथ कहानी, जुग चारे साचा एको वरते बिन गुर किने ना पाया, नानक रंग रवे रंग राती जिन हर सेती चित लाया।

धर की सेवा च पार जात जप लख फेवा काम क्रोध किल विख गुर काटे पूर्ण होई आसा जियो पूर्ण भाग भये जिस प्राणी साध संग मिले सारंग पाणी साध संग मिले सारंग पाणी नानक नाम वसिया जिस अंत प्रवान ग्रिस्त उदासा जियो माज महला पंजवा सिमरत नाम हृदय सुख पाया हर कर कृपा भगत।

छूट जाए संसार दे राखै गोपाल रहाउ। आशा परम बेकार मोह इन महलो बाना, झूठ समगरी मन वसी पार ब्रह्म ना जाना।

खरका पै कर तो छुट्ट जो ऊपर लाधा रहाउ। जब तब संजम तुम खंडे जाके दुख डांड सिमरे नाही जोन दुख निरलजे पांड। हर संग सहाई मामीत ते स्यों तेरा भेद।

रहाउ। वर्ण श्रम शास्त्र सुन दर्शन की प्यास, रूप न रेख न पंच तत् ठाकुर अविनाश। ओहो स्वरूप संतन कह बिरले जुगी सुर।

मूल पूरन भंडार। चरण कमल मन तन बसे प्रभगम पार, बस्त कमावत सब सुखी किस ऊन दिसै, संत प्रसाद भेटे प्रभु पूर्ण जगदीसै। जय जयकार सबै करहे सच थां सुहाया, जप नानक नाम निधान सुख पूरा गुर पाया। बिलावल महला पंजवा।

कथा कीर्तन राग नाद धुन एहो बनयो सुहावो नानक प्राप सो प्रसन्न भए बांछत फल पाओ बिलावल महला पंजवां दास तेरे की बेनती रिद कर प्रगास।

पंजब तरत सुहावी सफल थान पूर्ण पय काम। पौ नाठा भ्रम मिट गया रव्या निध राम, साजना के संग बसत सुख सहज विश्राम। साई घड़ी सुलखनी सिमरत हर नाम रहाउ, प्रगट भय संसार मह फिरते पहनाम। नानक तेस सरनागति घट घट सब जान, बिलावल महला पंजवा।

पंज बार मार जनमे जिन बिसरिया जीवन का दाता पार ब्रह्म जिन सेव्या अन दिन रंग राता शांत सहज आनंद घना पूर्ण पियास सुख पाया हर साध संग सिमरत गुणतास रहाउ।

रहाउ। सेवद सेव सेव साध सेवौ सदा करो कृताय। अपै दान पावो पुरख दाते, मिल संगत हर गुण गाय। रसना

कनक कामनी सेज सोहनी छोड़ खिने मैं जावत हे उर्ज रहे इंद्री रस प्रेरे बिखे ठगोरी खावत हे।

पंजेमा अगम रूप अविनाशी करता पतत पवेतक निमुख जपाई है चरण सुन्यो प्राप्त पेटले संत चरण चरण मन लाई है कित विधि है कित संजम पाई है कहो सुरजन कित जुगती त्याई है रहा जो मानुख मानुख की सेवा ओह तिसकी लई लई पुन जाई है नानक सरन सरन सुख सागर मोह टेक तेरो एक नाई है बिलावल महला पंजवा संत सरन संत टहल करी तंद बंद अर सगल जंजारो अवर काज ते छूट परी रहा सूग सहजर कनो अनंदा गुर ते पायो नाम हरी ऐसो हर रस बरना सक गुर पूर है मेरी उल्ट तरी पेख्यो मोहन सब कै संगे ऊ न काहू सगल परी।

जन्म मरण की कटिए फांसी, साची दरगे का निशान। जो तुम करो सोई पल मानो, मन ते छूटे सगल गुमान। कहो नानक ताकी सरनाई, जा का किया सगल जहान। बिलावल महला पंजवा।

चरण गए। आवण जान परम पौ नाठा, जन्म मरण के किलविक दहे, निरपौ होए पजो जगदीश, यो पदार्थ बड़ पाग लहे।

तिन किए सुखाले भगत जना कहो साचा तान। दास अपने की आपे राखी पै पंजन ऊपर करते मान। पई मित्राई मिटी बुराई दृष्ट दूत हर काढ़े शान। सुख सहजा नंद कनेरे नानक जीवे हर गुणे वखान। बिलावल महला पंजवा। पार ब्रह्म प्रभय कृपाल कार्य सगल सवारे सतगुर जाप जाप साधु पय निहाल। रहाओ अंगीकार किया प्रभ अपने दोखी सगले पय रवाल।

अंतनंतर सरबनरंतर बल बल जाई हर के चरण जी अजुगत वस मेरे स्वामी सर्व सिद्ध तुम कारण करण आज जुगाद प्रभ रखदा आया हर सिमरत नानक नहीं डरन।

परमेश्वर सतगुर हम बारक तू पिता कृपाल रहाउ। मोहे निर्गुण गुण नाही कोई पहुँच न सको तुमरी काल तुमरी गत मित तुम ही जानो जियो पिंड सब तुमरो माल। अंतर जामी पुरख स्वामी आन बोलत ही जानो हाल तान मान शीतल होए हमारो नानक प्रभु जी नजर निहाल। बिलावल महला पंजवा राग सदा प्रभ अपने साध तू हमरो प्रीत मन मोहन तुज बिन जीवन सगल अकाथ रहाओ। रंग तेरा

सरन सुहागन चरण सीस तार लालन मोह मिला बहो काब कर ही आ बैरी सुनो सहेरी मिलन बाद कहो सगरो अंग मिटावो तो कर ही लालन पाव तब रस मंगल गुण गा बहो आनंद रूप त्या बहो नानक द्वारे आयो तो मैं लालन पायो री मोहन रूप दिखावे अब मोह नींद सुहावे सा मेरी तिखा बुझानी अब मैं सहज समानी मीठी पिरे कहानी मोहन लालन पायोरी रहाओ दूजा बिलावल राचो नाथ ही सहाई संतना अब चरण गए रहाओ आहे मन अवरण पावे चरणावे उलझ्यो अल ग्रंद कमल ज्यो आन रस नहीं चाह एक हर लाह आन ते टूटी है रेख ते छूटी है मन हारस घूटी है संग साधु उल्टी है अन नाही नाही।

दया जागे ज्ञान तातले बलैया तस्कर हे रुआए लुकाने गुर कै शब्द पकड़ बंद पैया हर हर नाम पोत बोहेता केवल शब्द गुर पार लंगैया जाम जागाती नेड़ न आवै ना को तस्कर चोर लगैया हर गुण गावै सदा दिन राती मैं हर जस कहते अंत न लहिया गुरमुख मनुआ इगद कर आवै मिलो गोपाल निशान बजैया नैनी देख दर्श मातृवत श्रवण बाणी गुर शब्द सुनैया सुन सुन आत्म देव है पीने रस रस राम गोपाल रवैया त्रै गुण माया मोहे व्यापे तुरिया गुण है गुरमुख लहिया एक दृष्ट सब सम कर जाने नदरिया वैसा ब्रह्म पसरैया

चंदन निकट सब चंदन हुइया साकत कूड़े ऊब सुख हुए मन अभिमान बिछड़ दूर गईया। हर गत मित करता आपे जाने सब बिद हर हर आप बनैया। जे सतगुर भेटे सो कंचन होवे जो तुर लिखिया सो मिटे ना मटैया। रतन पदार्थ गुरमत पावे सागर भगत भंडार खुलैया। गुर चरणी एक सरदा उपजी मैं हर गुण कहते तृप्त न पैया।

परैया शास्त्र वेद प्राण पुकार धर्म करो कहट कर्म दृढ़ैया मनमो पाखंड परम विगूते लोभ लहर ना पार बुढ़ैया नाम जपो नामे गत पाव सिमरत शास्त्र नाम दृढ़ैया होमै जाय ता निर्मल होवै गुरमुख परचे परम पद पैया।

राम गुर मोहन मोहे मन लैया हो आकल बिगल पई गुर देखे हो लोट पोट होए पैया रहा हो निरखत फिर सब देश संतर मैं प्रभ देखण को बहुत मन चैया।

किया। हाँ खिन खिन रह न सको बिन प्रीतम ज्यो बिन अमल अमली मर गईया। जिनको प्यास होए प्रभ के रीत ने अवर न पावे बिन हर को दुइया। कोई आन आन मेरा प्रभु मिलावे हाँ तिस बिटो बाल बाल घूम गईया। अनेक जन्म के विछड़े जन मेले जा सत सत सतगुर सरन पवैया।

ज्यों चकबी सूरज आस नानक चरण प्यास ज्यों तरुण भरत प्राण ज्यों लोभी है धन दान ज्यों दूध जले संजोग ज्यों मां खुद अर्त

तेस मैं मनुआ रया ले बलाए प्रण जनान काल न खाए नाओ नौमी नवे नाथ नव खंडा काट काट नाथ महाबल मंडाई।

वेका। फलोहार किए फल जाए, रस कस खाए साद गवाए, कूड़े लालच लपटे लपटाए, छूटे गुरमुख साज कमाए। दुआ दस मुद्रा मन अवधूता, एनस जागस कबू न सूता।

ससी अर गगन जो त्यो लोई कर कर वेख करता सोई गुरते दिसे सो तिस ही माहे मन मुंग भूले आवे जाहे घर दर थाव तिर थां सुहावै आ पछाणै जां सतगुर पावै जय आसा तै बिनस बिनासा फूटे खप्पर दुबदा मनसा ममता जाल तेरे उदासा प्रणत नानक अमता के दासा बिलावल महला तीजा वार सत घर दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद आदित वार आद पुरख है सोई आपे वरत अवर न कोई ओत पोत जग रहा परोई आपे करता करे सोई नाम रते सदा सुख होई।

सोमवार सातरया समाए तिस की कीमत कही ना जाए आख आख रहे सबले बलाए जिस देव तिस पल पाए अगम गोचर लखया ना जाए गुर के शब्द हरया समाए मंगल माया मोह पाया आपे सिर सिर तंदे लाया आप बुझाए सोई बूझे गुर के शब्द दा

अगाध बोध काथ कथिया सह प्रभ गुण गावे राम नाम रसाल रसिया रवे साज प्यारिया गुरु शब्द दिया दान किया नानका विचारिया सिर तर मोह अड़ी पिर संग सूती राम गुर के पाए चलो सा संगूती राम धन सा संगूती हर संग सूती संग सखी सहेलिया एक पाए एक मन नाम वसया सतगुरु हम मेलिया दिन रैन कड़ी न चसा विसरै सास सास निरंजन सब जोत जगाए दीपक नानका पौ पंजनो।

निजगर सूतड़िए प्रेम जगाए राम। नवहान नव धन सबद जागी अपने पिर पाणिया, तज कूड़ कपट सुभाओ दूजा चाकरी लोकाणिया। मैं नाम हर का हार कंठे साज सबसी निशानिया।

जिन सुर मनयाड़ी अकात कहानी राम अकात कहानी पानर बाणी को विरला गुरमुख बूझाए ओ शब्द समाए आप गवाए तेरे पवन सोजी सूझाए।

हर हर हर राग प्राभ नानक जन तेरा राम। गुर हर प्राभग मंदिर डाया मन तन रंग पीना राम। भगत वशल हर नाम।

मिले संत प्यारे दया तारे कथे कथ विचार एक चेते के मन ध्याए स्वामी लाए प्रीत प्यार कर जोड़ प्रापै कर बेनंती मिले हर जस लाह बिनवंत नानक दास तेरा मेरा प्रवगम था साह टल गणया पूर्ण संजोगो राम सुख समूह पया गया विजोगो राम मिल संत आए प्रव त्याय बने अजर जानिया मिल कत्तर होए सहज टोए मन प्रीत बुझी मानिया मिल जोत ज्योति ओत पोती हर नाम सब रस भोग बिनवंत नान सब संत मेली प्रव करण कारण जोग पवन सुहावड़ा तरत सुभागी राम प्राव घर आयड़ा गुरचरणी लागी राम गुरचरण लागी सहज जागी सगल इच्छा पुनिया मेरी आस पूरी संत धूरी हर मिले कंत विशुनिया आनंद अनदिन वजहे वाजे अहं बात मन की त्यागी बिनवंत नान शरण स्वामी संत संग लेव लागी।

अमर पद भी पावे बिसमन बिसम पई पे गुण बिनासी राम कर गए पूजा गई कट जम की फासी राम गए पूजा लीनी दास कीनी अंकर उदोत जनाया।

ਰਹੋ ਜਤ ਕਤ ਦੇਖੂੰ ਤਾਂ ਤੁਮ ਹੀ ਮੋਹੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਇਓ ਕਹਿ ਪੈ ਕਰੂੰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਸੁਣ ਤੋ ਹੈ ਰਗੁਰਾਇਓ ਲਹਿਓ ਸਹਿਸਾ ਬੰਧਨ ਗੁਰ ਤੋਰੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਸਹਿ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਹੋਣਾ ਸਾ ਸੋਈ ਫੁਨ ਹੋਸੀ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਕਹਾਂ ਦਿਖਾਇਓ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਾ ਏਕੋ ਠਾਣਾ ਗੁਰ ਪਰਦਾ ਖੋਲ ਦਿਖਾਇਓ ਨਾਉ ਨਿਧ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਇਕਠਾਈ ਤੋ ਬਾਹਰ ਕੈਠੇ ਜਾਇਓ ਏਕੈ ਕਣਕ ਅਨਿਕ ਪਾਸਾ ਜੀ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਾਇਓ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਗੁਰ ਖੋਈ ਹੈ ਇਵ ਤੱਤੇ ਤੱਤ ਮਿਲਾਇਓ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਔਦ ਕਟਹਿ ਦਿਨ ਸੁਰੈਣਾ ਰੇ ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਓ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਪੇਲਾ ਈਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰਲਾ ਆਗੇ ਵਸਨ ਸੁਹੇਲਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਇਆ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮੈਂ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸੈ ਜਗਾਈ ਪਿਆਈ ਹਰ ਰਸ ਅਕਥਕਤਾ ਤੇ ਜਾਨੀ ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਵਿਹਾਜੀ ਹੋ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨੈ ਵਸੀਰਾ ਨਿਜ ਕਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋਫੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹੀ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੁੱਖ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੋਰੇ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਮੋਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਰਹਾਉ ਪੰਚ ਬਿਖਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬਾ ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ ਖੇਦ ਕਰੈ ਔਰ ਬਹੁ ਸੰਤਾਵੈ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੇ ਕਰ ਕਰ ਹਾਰਿਓ ਅਨਕ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ ਛੋਡੈ ਕਤਹੁ ਨਾਹੀ ਏਕ ਬਾਤ ਸੁਣਤਾ ਕੀ ਓਟਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟ ਜਾਹੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਮੋਹੇ ਤਿੰਨ ਤੇ ਧੀਰਜ ਪਾਇਆ ਸੰਤੀ ਮੰਤ ਦਿਓ ਮੋਹਿ ਨਿਰਭਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਇਆ ਜੀ ਤਲੇ ਉਹ ਮਹਾਂ ਬਿਖਾਦੀ ਸਹਿ ਸੁਹੇਲੀ ਬਾਣੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਇਆ ਪਰਗਾਸਾ ਪਾਇਆ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣੀ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਉਹ ਅਬਿਨਾਸੀ ਰਾਇਆ ਨਿਰਭਉ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਵਸਤੀ ਇਹ ਡਰਨ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਰਹਾਓ ਏਕ ਮਹਿਲ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾਂ ਫਾਰੋ ਏਕ ਮਹਿਲ ਨੀ ਮਾਨੋ ਏਕ ਮਹਿਲ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪੇ ਏਕ ਮਹਿਲ ਗਰੀਬਾਨੋ ਏਕ ਮਹਿਲ ਤੂੰ ਪੰਡਿਤ ਬਖਤਾ ਏਕ ਮਹਿਲ ਖਲਹੋਤਾ ਏਕ ਮਹਿਲ ਤੂੰ ਸਭ ਕਿਛੁ ਗ੍ਰਹਿਜ ਏਕ ਮਹਿਲ ਕਛੁ ਨਾ ਲੇਤਾ ਕਾਠ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਕਾਂ ਕਰੇ ਵਾਪਰੀ ਖਿਲਾਵਣ ਹਾਰੋ ਜਾਣੈ ਜੈਸਾ ਭੀਕ ਕਰਾਵੇ ਬਾਜੀ ਕਰ ਉਹ ਤੈ ਸੋਹੀ ਸਾਜ ਆਨੈ ਅਨਕ ਕੋਠਰੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰੀ ਆਪ ਹੁਆ ਰਖਵਾਰਾ ਜੈਸੇ ਮਹਿਲ ਰਾਖੈ ਤੈਸੈ ਰਹਿਣਾ ਕਿਆ ਇਹ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਨ ਕਿਸ਼ਕੀ ਆ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਜਿਨ ਇਹ ਸਭ ਵਿੱਚ ਸਾਜੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਪਰੰਪਰ ਸਵਾਮੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੇ ਕਾਜੀ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਛੋੜ ਛੋੜ ਰੇ ਬਿਕੁਆ ਕੇ ਰਸੂਆ ਉਰਜ ਰਹੋ ਰੇ ਬਾਵਰ ਗਾਵਰ ਜਿਉਂ ਹਿਰ ਕਿਰਖੈ ਹਰਿਆਇਓ ਪਸ਼ੂਆ ਰਹਾਓ ਜੋ ਜਾਣੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਜੈ ਸੋ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲੈ ਤੇਰੇ ਤਸੂਆ ਨਾਂਗੋ ਆਇਓ ਨਾਂਗ ਸਿਧਾਸੀ ਫੇਰ ਫਿਰਿਓ ਅਰਕਾਲ ਗਰਸੂਆ ਭੇਖ ਭੇਖ ਰੇ ਕੋ ਸੰਭ ਕੀ ਲੀਲਾ ਰਾਚ ਮਾਚ ਦਿਨ ਹੋ ਲੋ ਹਸੂਆ ਸੀਜਤ ਡੋਰ ਦਿਨਸ ਅਰਣੀ ਜੀ ਕੋ ਕਾਜ ਨ ਕੀਨੋ ਕਸ਼ੂਆ ਕਰਤ ਕਰਤ ਇਹ ਵੀ ਵਿਰਧਾਨੋ ਹਾਰਿਓ ਉਕਤੈ ਤਨ ਖੀ ਨਸੂਆ ਜਿਉਂ ਮੋਹਿਓ ਮੋਹ ਓਨ ਮੋਹਨੀ ਬਾਲਾ ਉਸ ਤੇ ਕਟੈ ਨਾਹੀ ਰੁਚ ਚਸੂਆ ਜਗ ਐਸਾ ਮੋਹਿ ਗੁਰੈ ਦਿਖਾਇਓ ਤਉ ਸ਼ਰਨ ਪਰਿਓ ਤਜ ਗਰਬਸੂਆ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸੰਤ ਬਤਾਇਓ ਦ੍ਰਿੜੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਭਗਤ ਹਰ ਜਸੂਆ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੁਜ ਬਿਨ ਕਵਣ ਹਮਾਰਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰਾ ਰਹਾਓ
अंतर की बे तुम ही जानी, तुम ही सजन सुहेले, सर्ब सुखा मैं तुझते पाई, मेरे ठाकुर अगह अतोले। भरना साकू तुमरे रंगा, गुण निधान सुख दाते, अगम्य गोचर प्रभ अवनासी, पूरे गुरते जाते। भ्रम पौ काट किए नेह केवल, जब ते हो मैं मारी, जन्म मन को सो छुखो सहसा, साध संगत दर सारी। चरण पखार करो गिर सेवा, बार जाऊं लख बरिया, जे प्रसादे पौ जल तरिया, जन नानक प्रे संग मिरिया। गौड़ी महला पंजवा, तुझ बिन कवन रीचा वै तो ही, तेरो रूप सगल देख मोही, राव सुरग पयाल मृत प्रभु मंडल, सर्व समानो एक है ओही। सेव सेव करत सगल कर जो है, सर्व मया ठाकुर तेरी दोही। पतित पावन ठाकुर नाम तुमरा, सुखदाई निर्मल सीतलोही, ज्ञान ध्यान नानक वड्याई, संत तेरे स्यों गाल गलोही। गौड़ी महला पंजवा, मिलो प्यारे जिया, प्रभ किया तुम्हारा थिया रहो, अनक जन्म बो जोनी प्रमया, बहर बहर दुख पाया, तुमरी कृपा ते मानुख दे पाई है, देहो दरस हर राया। सोई हुआ जो तिस पाणा, अवरणा किनका कीता, तुमरे पाणे परम मोए मोहया, जागत नाही सूता। बिनो सुनो तुम प्राण पत प्यारे, कृपा निध दयाला, राख लियो पिता प्रभ मेरे, अनाथ है कर प्रदपाल। जिसनु तुम्हें दिखायो दर्शन, साध संगत कह पाछे, कर कृपा तूर दिहो संतन की, सुख नानक ही पाछे। गौड़ी महला पंजवा, हो ता कै बलिहारी, जा कै केवल नाम आधारी रहो, मैं माता की कीर्त गणिए, जन पार ब्रह्म रंग राते, सुख सहज आनंद तिना संग, उन समसर अवर न दाते। जगत उदाहरण से ही आए, जो जन दर्श प्यासा, उनकी शरण परै सो तरिया, संत संग पूर्ण आसा। ता कै चरण परो ता जीवा, जन कै संग निहाला, भगतन की रेण होए मन मेरा, हो प्रभु कृपाला। राज जोवन अवजो दिसै, सबके जग में काटिया, नाम निधान साध नव तन निर्मल, इह नानक हर तन खाटिया। गौड़ी महला पंजवा, जोग जुगत सुन आयो गुरते, मोको सतगुर शब्द बुझायो रहाओ, नौखंड पृथ्वी ए तन मैं रविया, निमक निमक नमस्कारा, दीख्या गुर की मंदरा की नी दिड़ो एक निरंकारा। पंच चेले मिल पे कतरा, एक कह वस किए, दस वैरागण आज्ञाकारी, तब निर्मल जोगी थिए। परम जराए चराई विपुता, पंथ एक कर पेखिया, सह सुख सो किन्नी भुगता, सो ठाकुर मस्तक लिखिया। जय पहो नाही तहां आसन बांध्यो, सिंगी अनहत बाणी, तत् विचार डंडा कर राखियो, जुगत ना मन पहाणी। ऐसा जोगी वडभागी भेटै, माया के बंधन काटै, सेवा पूज करो तिस मूरत की, नानक तिस पग चाटै। गौड़ी महला पंजवा, अनूप पदार्थ नाम सुनो, सगल तिहाए ले मीता, हर औकत जा को गुर दिया, ताकै निर्मल चीता रहो। अंधकार मिट्यो ते तन ते, गुर शब्द दीपक परगासा, भ्रम की जाली ताकी काटी, जाको साध संगत विश्वासा। तारीले पवजर तारु विखड़ा, बोहित साधु संगा, पूर्ण होई मन की आसा, गुर भेट्यो हर रंगा। नाम खजाना भगती पाया, मन तन तिपत अकाए, नानक हर जियो ताको देवे, जाको हुक्म मनाए। गौड़ी महला पंजवा, दया मया कर प्राण पत मोरे, मोहे अनाथ चरण प्रभ तोरी, अंधकूप में हाथ दे राखो, कछु सियाण पियुक्त न मोरी रहो। करण करावण सब किस तुम ही, तुम समरथ नाही अनहोरी, तुमरी गत में तुम ही जानी, से सेवक जिन भाग मथोरी। अपने सेवक संग तुम प्रभ राते, ओत पोत भगतन संग जोरी,
प्रियो प्रियो नाम तेरा दर्शन चाहे जैसी दृष्टो चंद चकोरी। राम संत में पीत किश नाही एक जन कई में लाख करोरी जाके ही ये प्रगट प्रभ हुआ अंधन कीर्तन रस नरमोरी। तुम समराथे अपार अतूचे सुखदाते प्रभ प्राण अधोरी नानक कहो प्रभ की जय कृपा उन संतन के संग संगोरी। गौड़ी महला पंजवा तुम्हार से तीराते संतो निवाहे ले हो मोको पुरख विधाते ओढ़ पहुंचा वो दाते रहो। तुमरा मर्म तुमा ही जानिया तुम पूर्ण पुरख विधाते रखो शरण अनाथ दीन को करो हमारी गाती। तारण सागर बोहित चरण तुम्हारे तुम जानो अपनी पाते कर कृपा जिस राखो संगे तेते पार पराते। ईत ऊत प्रभ तुम समरथा सब किश तुम रह हाथे ऐसा निधान दे मोको हर जन चले हमारे साथे। निर्गुणिया रे को गुण की जय हर नाम मेरा मन जापे संत प्रसाद नानक हर पेटे मन तन शीतल त्रापे। गौड़ी महला पंजवा सहज समायो देव मोको सतगुरु पहे दयाल देव रहाओ काट जीवरी की उदासरो संतन टहलायो एक नाम को थियो पुजारी मोको अचर्ज गुरें दिखायो पयो प्रगास सर्व उजियारा गुर ज्ञान मने प्रगटायो। अमृत नाम पियो मन तृप्तिया अन पै ठहरायो मन आज्ञा सर्व सुख पाए दुख ठाओ गवायो। जो सो प्रसन्न पै प्रभ ठाकुर सब आनंद रूप दिखायो ना किश आवत ना किश जावत सब खेल कियो हरायो। कहो नानक आगम आगम है ठाकुर भक्त टेक हर नायो। गौड़ी महला पंजवा पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर मनता की ओट गही जहरे जिन तारे ब्रह्मंड खंड हर ताको नाम जपी जहरे रहाओ। मन की मत त्यागो हर जन हुकम बू सुख पाई रे जो प्रभ करे सोई फल मानो सुख दुख ओही तिहाई रे। कोट पतत उधारे खिन में करते बार ना लागे रे दीन दर्द दुख पंचन स्वामी जिस पावे तिसे निवाज रे। सब को मात पिता प्रत पालक जी प्राण सुख सागर रे दीन दे तोट नाही तिस करते पूर रहे ओ रत्नागर रे। जाचक जाचे नाम तेरा स्वामी घट घट अंतर सोई रे नानक दासता की शरणाई जाते बिरथा ना कोई रे। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर कबो न मनो विसारे इहां उहां सर्व सुखदाता सगल कटा प्रतपारे रहाओ। महा कष्ट काटे खिन भीतर रसना नाम चितारे शीतल शांत सुख हर शरणी जलती अग्न निवारे। गर्भ कुंड नरक ते राखे पाव जल पारे उतारे चरण कमल आराधत मन में जम की त्रास विदारे। पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारे गुण गावत त्यावत सुख सागर जुए जन्म नहारे। काम क्रोध लो मोह मन लीनो निर्गुण के दातारे कर कृपा अपनो नाम दीजे नानक सद बलिहारे। राग गौड़ी चेती महला पंजवा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद सुख नाही रे हर भगत बिना जीत जन्म ए रत्न अमोलक साध संगत जप एक खिना रहो। सुत संपत बनता बिनोद छोड़ गए बो लोग भोग है वरगैवर राज रंग त्याग चलो है मूढ़ नंग। चोआ चंदन दे फूलिया सो तंतर संगरूलिया मोह मोहया जाने दूर है कहो नानक सदा हदूर है। गौड़ी महला पंजमा मन तर तरवे हर नामनो सागर लहर संसा संसार गुरबोहित पार ग्रामनो रहाओ। कल काल कांदे आरिया गुर ज्ञान दीपक उजे आरिया बिख बिख्या पसरी अतकनी उभरै जप जप हर गुणी। मत वारो माया सोया गुर भेटत परम पोख होया कहो नानक एक त्याया घट घट नदरी आया। गौड़ी महला पंजवा दीवान हमारो तुही एक
सेवा थारी गुर है टेक रहाओ। अनक जुगत नहीं पाया गुर चाकर ले आया, मारे पंच बिखा दिया गुर कृपा ते दल साधिया। बख्शीस वजो मिल एक नाम, सुख सहज आनंद विश्राम, प्रभ के चाकर से पले नानक तिन मुख उजले। गौड़ी महला पंजवा, जियरे ओला नाम का अवरज करम कमावणो, अवरज करम करण करावणो, तिन में पाव है जाम करहाओ। अवरज तन नहीं पाई है वड्ढे पाग हर त्याई है, लाख हिकमती जानी है आग्ञा तिल नहीं मानी है। अहंग बुद्ध कर्म कमावणे ग्रह बालू नीर बहावणे, प्रभ कृपाल कृपा करे नाम नानक साधु संग मिले। गौड़ी महला पंजवा, बार ने बलिहार ने लख बरिया, नामो हो नाम साहिब को प्राण अधरिया रहाओ। करण करावन तू ही एक, जी जंत की तू ही टेक, राज जोवन प्रभ तू तनी, तू निर्गुण तू सरगुणी, इहां उहां तुम रखे गुर कृपा ते को लखे। अंतर जामी प्रभ सुजान, नानक तकिया तू ही तान। गौड़ी महला पंजवा, हर हर हर आराधी है संत संग हर मन वसै, परम मोह पौ साधिए रहाओ। वेद प्राण सिमरत सुने सब ऊच विराजित जन सुने, सगल अस्थान पै पीत चीन, राम सेवक पै रहत कीन। लख चौरासी जोन फिरे गोबिंद लोक नहीं जन्म मरहें, बल बुद्ध स्याण पाव मैं रही, हर साध शरण नानक गई। गौड़ी महला पंजमा, मन राम नाम गुण गई है, नीत नीत हर सेवी है, सास सास हर त्याई है रहाओ। संत संग हर मन वसे, दुख दर्द अनेरा परम नसे, संत प्रसाद हर जापी है, सो जन दुख न व्यापी है। जाको गुर हर मंत्र दे सो उभरिया माया अगंते, नानको ब्रह्मया कर मेरे मन तन वासे नाम हर। गौड़ी महला पंजवा, रसना जपिए एक नाम, इहां सुख आनंद कणा, आगे जी कह संग काम रहाओ। कटिए तेरा अहंग रोग, तू गुर प्रसाद कर राज जोग, हर जा जिन जन चाखिया ताकि तृष्णा लाथिया, हर विश्राम निध पाया सो बहरना कत ही ताया। हर हर नाम जाको गुर दिया, नानक ताका पहु गया। गौड़ी महला पंजवा, जाको विसरै राम नाम ताहू को पीर, साध संगत मिल हर वैसे गुणी गहीर रहाओ। जाको गुरमुख हृदय बुद्ध ताके करतल नव निसिद, जो जाने हर प्रभ तनी किश नाही ताके कमी, करण हर पछानिया सर्व सुख रंग माणिया, हर तन जाके ग्रह वसै कहो नानक तिन संग दुख नसै। गौड़ी महला पंजवा, गर्भ बडो मूल इतनो रहन नहीं गो कितनो रहाओ, बेवर्जत बेद संतना वाहू स्यो रेहितनो, हार जुआर जुए बिदे इंद्री वसल जितनो, हरण परण संपूर्णा चरण कमल रंग रितनो, नानक उदरे साध संग कृपा निध मैं दितनो। गौड़ी महला पंजवा, मोहि दासरो ठाकुर को तान प्रभ का खाना रहाओ, ऐसो है रे खसमा मारा खिन मैं साथ सवारन हारा, काम करी जे ठाकुर पावा गीत चरित प्रभ के गुण गावा, शरण परयो ठाकुर वजीरा तिना देख मेरा मन तीरा, एक टेक एक आधारा जन नानक हर की लागा कारा। गौड़ी महला पंजवा, है कोई ऐसा हो मैं तोरे इस मीठी ते इह मन हो रै रहाओ, अज्ञानी हारिया अनक बिदी कटोरे, अज्ञानी मानुक भया जो नाही सोलोरे, रैण अंधारी कारिया कवन जुग जित पोरे, परम तो हारिया अनक बिदी कटोरे, कहो नानक कृपा पई साध संगत निध मोरे। गौड़ी महला पंजवा, चिंता मन करुणामय रहाओ,
दीन दयाला पार ब्रह्म जा कै सिमन सुख भई अकाल मूर्ख अकाल पुरख आगाध बोध सुनत जसो कोट अग खई कृपा निध ब्रह्मया तार नानक हर हर नाम लय गौड़ी पूर्वी महला पंजवा मेरे मन शरण प्रभु सुख पाई जा दिन विसरे प्राण पत सुखदाता सो दिन जाता जाए रहाओ एक रहन के पाहन तुम आए बहु जगया सुवधाई ग्रह मंदर संपै ज्योति से ज्यों तरवर की शाई तन मेरा संपै सब मेरी बाग मिलख सब जाए देवनहारा विसरियो ठाकुर खिन में होत पराए पैरे बागा कर इशनाना चोआ चंदन लाए निरभउ निरंकार नहीं चीनिया ज्यों हस्ती नावाए जो होए कृपालता सतगुरु मिले सब सुख हर के नाए मुक्त पया बंधन गुर खोले जन नानक हर गुण गाए गौड़ी पूर्वी महला पंजवा मेरे मन गुर गुर गुर सद करिए रतन जन्म सफल गुर किया दर्शन को बरहरिय रहाओ जेते सास ग्रास मन लीता तेते ही गुण गाइए जो होए दयाल सतगुर अपना ता इह मत बुध पाइए मेरे मन नाम ले जंबन ते छूटे सर्व सुखा सुख पाइए सेव स्वामी सतगुरदाता मन बंचत फल पाइए नाम इष्ट मीत सुतकर्ता मन संग तुहारे चल कर सेवा सतगुर अपने की गुर ते पाइए पाल गुर कृपाल कृपा प्रवधारी बिन से सर्व अंदेसा नानक सुख पाया हर कीर्तन मिट्यो सगल कलेशा राग गौड़ी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तृष्णा बिरले ही की बुझी है रहाओ कोट जोरे लाख करोरे मन ना होरे परे परे ही को लुजी है सुंदर नारी अनक प्रकारी पर ग्रह बेकारी बुरा पला नहीं सुजी है अनक बंधन माया पर मत पर माया गुण निध नाही गाया मन विखे ही मैं लुजी हे जा कोरे कृपा करे जीवत सोई मरे साध संग माया तरे नानक सो जन दर हर सिजी हे गौड़ी महला पंजवा सबहू को रस हर हो रहाओ काहू जोग काहू भोग काहू ज्ञान काहू ध्यान काहू हो दंड तर हो काहू जाप काहू ताप काहू पूजा होम नेम काहू ओ गौण कर हो काहू तीर काहू नीर काहू वेद विचार नानका भगत प्रेहो गौड़ी महला पंजवा गुण कीरत निध मोरी रहाओ तू ही रस तू ही जस तू ही रूप तू ही रंग आस उठ प्रभ तोरी तू ही मान तू ही तहन तू ही पत तू ही प्राण गुर तूटी लै जोरी तू ही ग्रह तू ही बन तू ही गाओ तू ही सुन है नानक नीर नीरी गौड़ी महला पंजवा मातो हर रंग मातो रहाओ ओही पियो ओही खियो गुरै दियो दान कियो ओहाओ स्यो मन रातो ओही पाठी ओही पोचा ओही प्यारो ओही रुचा मन ओह सुख जातो सहज केल अनंद खेल रहे फेर पहि मेल नानक गुर शब्द परातो राग गौड़ी मालवा महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर नाम लेहो मीता लेहो आगे बिखम पंथ पैया रहाओ सेवत सदा सेव तेरे संग वस्त है काल कर सेवा तू साधकी हो काटिए जमजाल होम जग तीरथ किए बिच होम है बदे विकार नरक सुरग दोए पुंचना होए बहुर बहुरे अवतार शिवपुरी ब्रह्म इंद्र पुरी ने चल को थाओ नाहें बिन हर सेवा सुख नहीं हो सकत आवै जाहे जैसो गुर उपदेसिया मैं तैसो कहया पुकार नानक कह सुन रे मना कर कीर्तन होए उधार राग गौड़ी माला महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पायो बाल बुद्ध सुख रे हरख सोख आन मृत दुख सुख चित समसर गुर मिले रहाओ जौलो हो किसो चौचित वो तौलो दुखन परे
जो किरपाल गुर पूरा पिटिया तो आनंद सहजी जेती सियान कर्म हो किए तेते बंद परे जो साधु कर्म स्तक धरियो तब हम मुक्त पाए जो लो मेरो मेरो कर तो लो बिख केरे मन तन बुद्धि अर्पी ठाकर को तब हम सहजे सोए जो लो पोटे उठाई चलियो तो लो डान परे पोट डार गुरपुरा मिलिया तो नानक निरपय गौड़ी माला महला पंजवा पावन त्यागियो री त्यागियो त्यागियो मैं गुर मिल त्यागियो सर्व सुख आनंद मंगल रस मान गोबिंद आग्यो रहाओ मान अपमान दो समाने मस्तक डार गुर पागियो संपत हरख न आवत दुखा रंग ठाकुर लागियो बास बासरी एक है स्वामी उद्यान दिष्टागियो निरपौ पय संत परम डारियो पूरन सरभाग्यो जो किश करते कारण कीनो मन बुरो न लागियो साध संगत प्रसाद संतन के सोयो मन जागियो जन नानक ओड़ तुहारी परियो आए पयो शरणागियो नाम रंग सहज रसमाने फिर दुख न लागियो गौड़ी माला महला पंजवा पाया लाल रतन मन पाया तन शीतल मन शीतल थिया सतगुर शब्द समाया रहाओ लाती भूक त्रिशन सब लाती चिंता सगल विसारी कर मस्तक गुर पूरे धरियो मन जीतो जग सारी तृप्ति अखाई रहे हृदय अंतर डोलन ते अब चूके अखुट खजाना सतगुर दिया तोट नहीं रे मुके अचर जी को सुनो रे पाई गुर ऐसी बूझ बुझाई लाहे परदा ठाकर जो पेटियो तो रे विसर गई तात पराई कहो न जाई ए अचंपो जो जाने जिन चाखिया कहो नानक सच पै वेगासा गौर निधान हृदय राखिया गौड़ी माला महला पंजवा उभरत राजा राम की शरणी सर्वलोक माया के मंडल गिर गिर परते धरनी रहाओ शास्त्र सिमरत वेद विचारे महापुरखन इयो कहिया बिन हर भजन नाही निस्तारा सूख न किन्हू लहिया तीन पवन की लक्ष्मी जोरी बूझत नाही लहरे बिन हर भगत कहाँ थित पावे फिर तो पैरे पैरे अनक बिलास करत मन मोहन पूर्ण होत न कामा जल तो कबू न बूझत सगल बिरथे बिन नामा हर का नाम जपो मेरे मीता यह सार सुख पूरा साध संगत जन्म मर निवार नानक जन की धूरा गौड़ी माला महला पंजवा मोको ए बिद को समझावे करता होए जनावे रहाओ अनजानत किश इने कमानो जब तब का सुना साधा दै दिस लै ए मन दौरायो कवन कर्म कर बाधा मन तन तन भूमिका ठाकुर हौ इसका ए मीरा परमो का सूजस नाही ए पैकर पे पैरा जब एक हां कमावन परया जब एक अशुन होता जब एक निरंजन निरंकार प्रभ सब किश आपे करता अपने कर्तव्य आपे जाने जिन ए रच नरचाया कहो नानक करणहार है आपे सतगुर परम चुकाया गौड़ी माला महला पंजवा हार बिन अवर किरिया बिरथे जप तप संजम कर्म कमाने ए ऊरे मुसे रहाओ भरत नेम संजम में रहता तिनका आड न पाया आग्ञा चलन और नहीं पाई ऊहा काम न आया तीर्थ नाए और तरणी परमता आग्ञा ठोर ना पावे ऊहा काम न आवे ए विद ओह लोगन ही पति आवे चतुर्वेद मुख बचनी उचरे आगे मैल न पाईए बूझे नाही एक सुधाकर ओ सगली चाक जकाईए नानक कह तो ए विचारा जे कमावे सो पार ग्रामी गुरसेवो और नाम त्यावहो त्यागहो मनहो गुमानी गौणी महला पंजवा माधव हर हर हर मुख कहिए हम ते कछु न होवे स्वामी
ज्यों रख हो त्यों रही रहाओ क्या किश करे के करने हारा क्या इस हाथ विचारे जित तुम लाभो ते ती लागा पूर्ण खसम हमारे करो कृपा सर्व के दाते एक रूप लिव लाभो नानक की बेनंती हर पै अपना नाम जपावो राग गौड़ी माझ महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दीन दयाल दमोदर राया जियो कोट जना कर सेव लगाया जियो भगत वशल तेरा बिरद रखाया जियो पूर्ण सबनी जाही जियो क्यों पेखा प्रीतम कवन सुकरनी जियो संतां दासी सेवा चरनी जियो ए जियो वताई बल बल जाई जियो तिस निव निव लागो पाई जियो पोथी पंडित बेद खुजंता जियो होए वैरागी तीर्थ नावंता जियो गीत नाद कीर्तन गावंता जियो हर निरपो नाम त्याई जियो पए कृपाल स्वामी मेरे जियो पतित पवित लग गुर के पैरे जियो परम पौ काट की निर्वैर जियो गुरमन की आस पूराई जियो जिन नौ पाया सो धनवंता जियो जिन प्रभ त्याया सो सोभावंता जियो जे साधु संगत ते सब सुकरनी जियो जन नानक सहज समाई जियो गौड़ी महला पंजवा माझ आओ हमारे राम प्यारे जियो रैन दिनस सा सा चितारे जियो संत दियो संदेसा पै चरणारे जियो तुद बिन कित बिद तरिए जियो संग तुम्हारे मैं करे आनंदा जियो वन तिण त्रे भवन सुख परमानंदा जियो सेज सुहावी ए मन बिग संदा जियो पेख दर्शन ए सुख लई है जियो चरण पखार करी ने सेवा जियो पूजा अर्चा बंधन देवा जियो दासन दास नाम जप लेवा जियो बिनो ठाकुर पै कही है जियो इच पुन्नी मेरी मन तन हरिया जियो दर्शन पेखत सब दुख पर हरिया जियो हर हर नाम जपे जप तरिया जियो ए अजर नानक सुख सही है जियो गौड़ी माझ महला पंजवा सुन सुन साजन मन मित प्यारे जियो मन तन तेरा ए जियो पे वारे जियो विसरनाई प्रपण आधारे जियो सदा तेरी शरणाई जियो जिस मिले मन जीवे भाई जियो गुर प्रसादी सो हर पाई जियो सब किस प्रभ का प्रभ किया जाई जियो प्रभ को सद बल जाई जियो ए निदान जपैवड़ भागी जियो नाम निरंजन एक लिव लागी जियो गुरपूरा पाया सब दुख मिटाया जियो आठ पैर गुण गाया जियो रतन पदार्थ नाम तुम्हारा जियो तू सच्चा साहू भगत बनजारा जियो हर तन रास सच वपारा जियो जन नानक सद बलिहारा जियो राग गौड़ी माझ महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तू मेरा बहुमान करते तू मेरा बहुमान जोर तुम्हारा सुख वसा सच शब्द निशान रहो सबे गल्ला जातिया सुन के चुप किया कदी सुरत न लदिया माया मोहड़िया दे बुझारत सारत से अखी डिठड़िया कोई जे मूर्ख लोभिया मोल न सुनी कहया एकस दो चौक्या गणी सब एकत साध मुठी एक अद नाए रसीड़ा का विरला जाए बुठी भगत सचे दरसों दे अनद करें दिन रात रंगर ते परमेश्वर है जन नानक तिन बल जात गौड़ी महला पंजवा बाज दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम आठ पैर आराधी है पूर्ण सतगुर ज्ञान रहाओ जित कट वसै पार ब्रह्म सोई सुहावा थाओ जम कंकर निर्णय आवई रसना हर गुण गाओ सेवा सुरत न जानिया ना जापे आराध और तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगमे अगाद पहे कृपाल गुसाइया नठे सोग संताप तत्ती वाव ना लग गई सतगुर रखे आप गुर नारायण दई गुर गुरु सच्चा सिरजनहार गुर तुठे सब कुछ पाया
ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਰਿਹਾਰ ਗੌੜੀ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮਾ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਾਮਾ ਰਾਓ ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪਿੰਦਿਆਂ ਹੋਆ ਮੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਹਰ ਜਸ ਸੁਣੀਐ ਜਿਸ ਤੇ ਸੋਈ ਭਾਈ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਸਭ ਫਲਾ ਸਰਬ ਗੁਣਾ ਜਿਸ ਮਾਏ ਕਿਉਂ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਐ ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਦੁੱਖ ਜਾਹੇ ਜਿਸ ਲੜ ਲੱਗਿਆਂ ਜੀਵੀਐ ਪਹੁ ਜਲ ਪਾਈਏ ਪਾਰ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਉਦਾਰ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਉਜਲ ਦਰਬਾਰ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਗੋਪਾਲ ਜਸ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਉਬਰੇ ਨਾਮ ਜਪ ਦਰ ਸੱਚੇ ਸਵਾਸ ਗੌੜੀ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੀਠੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਜਿੰਦੂ ਤੂੰ ਮੀਠੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਸੱਚੇ ਛੇਤੀ ਰਤਿਆ ਮਿਲਿਆ ਨਿਥਾਵੈਂ ਥਾਓ ਰਾਓ ਹੋਰ ਸਾਸਾ ਫਿੱਕਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਵਿਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਕਰੇ ਫਿਟ ਸੋ ਜੀਵਨ ਸੋਏ ਅੰਚਲ ਗਹਿ ਕੈ ਸਾਧਕਾ ਤਰਨਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਰਾਧੀ ਹੈ ਉਧਰੈ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਜਨ ਬੰਦ ਸੁਮਿੱਤਰ ਸੋ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਦੇ ਔਗਣ ਸਭ ਮਿਟਾਏ ਕਹਿ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰੇ ਮਾਲਕ ਜਾਨਾ ਥੇ ਉਹ ਕਰ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਜਾ ਚੁਕ ਦਰ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਨੂੰ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾਮਨ ਤਿਆ ਗਉ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ ਤਾਤੇ ਅਨਸ ਭਾਗੋ ਰਹਾਉ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਦੋਨੋ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੈ ਔਰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇਰੇ ਅਤੀਤਾ ਤਿੰਨ ਜਗ ਤਤ ਪਛਾਨਾ ਉਸ ਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੁੱਖ ਤਿਆਗੈ ਖੋਜੈ ਪਦ ਨਿਰਵਾਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਏ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ ਖਿੰਨ ਹੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਬਿਨ ਸਹਿ ਕੇ ਅਸਥਿਰ ਮਨੈ ਅਚਰਜ ਲਖਿਓ ਨਾ ਜਾਈ ਰਹਾਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਵਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਰ ਮੂਰਤ ਵਿਸਰਾਈ ਝੂਠਾ ਤਨ ਸਾਚਾ ਕਰਮਾਨਿਓ ਜਿਉ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿਣਾਈ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਸਗਰ ਬਿਨਾਸੈ ਜਿਉ ਬਹਾਦਰ ਕੀ ਛਾਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਗ ਜਾਨਿਓ ਮਿਥਿਆ ਰਹਿਓ ਰਾਮ ਸ਼ਰਣਾਈ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਉ ਹਰ ਜਸ ਮਨ ਨਹੀਂ ਆਵੈ ਐਨਸ ਮਗਨ ਰਹਿ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਕਉ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਰਹਾਓ ਭੂਤ ਮੀਤ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਸਿਉ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਪਬੰਦਾਵੈ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਉ ਝੂਠੋ ਇਹ ਜਗ ਦੇਖ ਤਾ ਸੁਟਤਾਵੈ ਭੁਗਤ ਮੁਕਤ ਕਾ ਕਾਰਨ ਸਵਾਮੀ ਮੂਰਤਾਏ ਵਿਸਰਾਵੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਕਉ ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਪਾਵੈ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ ਸਾਧੋ ਇਹ ਮਨ ਗਹਿਓ ਨਾ ਜਾਈ ਚੰਚਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੰਗ ਵਸਤ ਹੈ ਯਾ ਤੇ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ ਰਹਾਉ ਕਠਨ ਕ੍ਰੋਧ ਘਟ ਹੀ ਕੇ ਪੀਤਰ ਜੇ ਸੁਧ ਸਭ ਬਿਸਰਾਈ ਰਤਨ ਗਿਆਨ ਸਭ ਕੋ ਹਿਰਲੀਨਾ ਤਾ ਸਿਉ ਕਸ਼ ਨਾ ਵਸਾਈ ਜੋਗੀ ਜਤਨ ਕਰਤ ਸਭ ਹਾਰੇ ਗੁਣੀ ਰਹੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਏ ਦਿਆਲਾ ਤੋ ਸਭ ਬਿਦ ਬਣਿਆਈ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ ਸਾਧੋ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਓ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮੁਲਕ ਪਾਇਓ ਬਿਰਤਾ ਕਾਹੀ ਗਵਾਵੋ ਰਹਾਓ ਪਤਤ ਪਨੀਤ ਦੀਨ ਬੰਦ ਹਰ ਸ਼ਰਨ ਤਾਏ ਤੁਮ ਆਵੋ ਗਜ ਕੋ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਿਓ ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਤੁਮ ਕਾਹੇ ਵਿਸਰਾਵੋ ਤਾਂ ਜੇ ਅਪਮਾਨ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਫੁਨ ਭਜਨ ਰਾਮ ਚਿਤ ਲਾਵੋ ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਮੁਕਤ ਪੰਥ ਏ ਗੁਰਮੁਖੋਇ ਤੁਮ ਪਾਵੋ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ ਕੋ ਮਾਈ ਭੂਲਿਓ ਮਨ ਸਮਝਾਵੈ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਾਧ ਮਗ ਸੁਣ ਕਰ ਨਿਮਖ ਨਾਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਰਹਾਓ ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਪਾਈ ਮਾਨਸ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਸਿਰਾਵੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਮਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਤਾ ਸਿਉ ਰੁਚਿ ਉਪਜਾਵੈ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਸਦਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਤਾ ਸਿਉ ਨਿਉ ਲਗਾਵੈ ਨਾਨਕ ਮੁਕਤ ਤਾਏ ਤੁਮ ਮਾਨੋ ਜੇ ਘਟ ਰਾਮ ਸਮਾਵੈ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ ਸਾਧੋ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨ ਵਿਸਰਾਮਾ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੜੈ ਕੋ ਇਹ ਗੁਣ ਸਿਮਰੈ ਹਰ ਕੋ ਨਾ ਮਰਹਾਉ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਫੁਨ ਔ ਵਿਖਿਅਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਹਰਕ ਸੋਗ ਪਰ ਸਹਿਜੇ ਨਾਹਨ ਸੋ ਮੂਰਤ ਗੁਰਦੇਵਾ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਖ ਏ ਸਭ ਤਿਉਂ ਕੰਚਨ ਔਰ ਪੈਸਾ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਏ ਸਮਝਾ ਕੈ ਲੋਭ ਮੋਹ ਫੁਨ ਤੈਸਾ ਦੁਖ ਸੋ ਕੇ ਬਾਂਧੇ ਜੇ ਨਾਹਨ ਤੇ ਤੁਮ ਜਾਨੋ ਗਿਆਨੀ
नानक मुक्त दाए तुम मानो। ये बिद को जो प्राणी गौड़ी महला नौवा मन रे कहां पयो तें बोरा एहन से औदकटै नहीं जाने पयो लो संघोरा रहो। जो तन तें अपनो कर मान्यो अर सुंदर ग्रह नारी इन मैं कष्टे रोरे नाहन देखो सोच विचारी रतन जन्म अपने तहारियो गोविंद गत नहीं जानी निमख न लीन पयो चरणन स्यो बिरथा औद सिरानी कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावे और सगल जग माया मोहया निरभय पद नहीं पावे। गौड़ी महला नौवा नर अचेत पाप ते डर रे दीन दयाल सगल पै भंजन शरण ताहे तुम पर रे राव वेद प्राण जा सुन गावत ताको नाम ही है मोतर रे पावन नाम जगत मैं हर को सिमर सिमर कसमर सवार रे मानस दे बोर ने पावे कश पाव मुकत का कर रे नानक कैद गाए करुणा में पाव सागर के पार उतर रे राग गौड़ी अस्पदिया महला पहला गौड़ी ग्वारीरी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद निद सिद्ध निर्मल नाम विचार पूर्ण पूर रहा बिखमार त्रिकुटी छुटी बिमल मझार गुर की मजिया ही कार इन वेद रमत राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहो एक सुख मानिया सहज मिलाया निर्मल बाणी परम चुकाया लाल पे सुहा रंग माया नदर पई बिकठा करहाया उलट जीवन जीवत मर जा गया शब्द रवे मन हर स्यों लाग गया रस संग्रह बिक पर हर त्याग गया पाए वसै जम का पो पा गया सादर हे बाद अहंकारा चित हर स्यों राता हुक्म अपारा जात रे पत की आचारा दृष्ट पई सुख आत्म तारा तुझ बिन को न देखो मीत किस सेवो किस देवो चीत किस पूछो किस लागू पाए किस उपदेश नहा लिवलाए गुरसेवी गुर लागू पाए भगत करी राचो हरणाए सिख्या दीख्या भोजन पाओ हुक्म संजोगी निज कर जाओ गर्भ गतं सुख आत्म त्याना जोत पही ज्योति माहे समाना लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना न पंडित नहीं चतुर सियाना न भूलो न परम भुलाना कथो न कथनी हुक्म पछाना नानक गुरमत सह समाना गौड़ी गौरी री महला पहला मन कुंचर काया उद्यान गुर अंकस स शब्द निशान राज द्वारे सो वसो मन चतुराई ने चीनिया जाए बिन मारी क्यों कीमत पाए रहो घर में अमृत लस्क तस्कर लई नन्ना कारण कोई करी राखे आप वड़ियाई देई नील अनिल अगन इकठाई जल निवरी गुरबूज बझाई मन दे लिया रस गुण गाही ऐसा जैसा घर बाहर सो तैसा बैस गुफा मैं आखो कैसा सागर डूंगर निरपव ऐसा मुहे कौ कौ मारे कौन निडरे कौ कैसा डर कवन शब्द पछाने तीने पौन जिन कया तिन कैन बखानिया जिन बूझिया तिन सहज पछानिया देख विचार मेरा मन मानिया कीरत सूरत मुक्त कनाई तही निरंजन रहा समाई निज कर व्याप रहा निज ठाई उस्तत करें के ते मुन प्रीत तन मन सूचे सच सुचीत नानक हर भज नीता नीत गौड़ी ग्वारी री महला पहला ना मन मरे ना कार्ज होए मन वस दूता दुर मत दोए मन माने गुरती इक होए निर्गुण राम गणे वस होए आप निवार विचारे सोए रहाओ मन भूलो बोचित है विकार मन भूलो सिरिया व्यापार मन माने हरे कंकार मन भूलो माया कर जाए काम विरुद्ध हो रह न ठाए हर भज प्राणी रस नरसाए गैवर हैवर कंचन सुत नारी बो चिंता पिड़चा लहारी जुए किरण कच्ची सारी संपो संची पहे विकार हर कसो क्यों भय दरबार सुख सहजे जप हृदय मुरार नजर करे ताम भेल मिलाए
गुण संग्रह गुण शब्द जुलाए गुरमुख नाम पदार्थ पाए बिन नावै सब दुख निवास मन मुख मूढ़ माया चितवास गुरमुख ज्ञान तुर करम लिखियास मन चंचल तावत फुन तावे साचे सूचे मैल न पावे नानक गुरमुखर गुण गावे गौड़ी गौरी री महला पहला हउ मैं कर त्यान सुख होए मन मत झूठी सच्चा सोए सगल विगुते पावें दोए सुख मावे तुर लिखिया होए ऐसा जग देखिया जुआरी सब सुख मांगे नाम विसारी रहो अदिष्ट दिसे ता कहिया जाए बिन देखे कहना बिरथा जाए गुरमुख दी जैसे सुभाए सेवा सुरती क्लेव लाए सुख मांग दुख अगल होए सगल विकारी हार परोए एक बिना झूठे मुक्त न होए कर कर करता देखे सोए तृष्णा अग्न शब्द बुझाए दूजा परम सहज सुभाए गुरमती नाम हृदय वसाए साची बाणी हर गुण गाए तन में साचो गुरमुख पाओ नाम बिना नाही निज ठाओ प्रेम परायण प्रीतम राओ नदर करे तांबो जैनाओ माया मोह सर्व जंजाला मनमुख कुचील कुशित विकराला सतगुरु से वे चुके जंजाला अमृत नाम सदा सुख नाला गुरमुख बो जय एक लिव लाए निज करवा सहसा समाए जम्मन मरना ठाकर हाए पूरे गुरते ए मत पाए कथनी कथो न आवै और गुर पुछ देखिया नाही दर होर दुख सुख पाणा ते सर जाए नानक नीच कह लिव लाए गौड़ी महला पहला दूजी माया जगत चित वास काम क्रोध अहंकार विनाश दूजा कौन कहा नहीं कोई सब मैं एक निरंजन सोई राओ दूजी दुर्मतिया कह दोए आवै जाए मर दूजा होए धन गण देखो दोए नारी पुरख सवाई लोए राव सस देखो दीपक उजियाला सर्व निरंतर प्रीतम बाला कर कृपा मेरा चित लाया सतगुरु मोको एक बुझाया एक निरंजन गुरमुख जाता दूजा मार शब्द बछाता एक हुकम वरतै सब लोई एक हस्ते सब ओ पत होई राधो वै कसमे को जान गुर कै शब्द हुक्म पछाण सगल रूप वर्ण मन माही कहो नानक एको सालाही कौड़ी महला पहला अध्यात्म कर्म करे ता साचा मुक्त भेद क्या जाने काचा ऐसा जोगी जुक्त विचार है पंच मार साच उर तारे रहाओ जिसके अंतर साच वसावे जोग जुगत की कीमत पावे रावसा से को ग्रह उद्यान है करणी कीर्त कर्म समान है एक शब्द एक भीख्या मांगे ज्ञान त्यान जुगत सजागे पहरा च रह न बाहर जाए कीमत कौन रह लेव लाए आपे मेले परम चुकाए गुर प्रसाद परम पद पाए गुर की सेवा शब्द विचार हम मैं मारे करनी सार जप तप संजम पाठ पुराण कहो नानक अपरम प्रमाण गौड़ी महला पहला खिमा गही व्रत शील संतोखं रोग न व्यापै न जम दोखं मुक्त भय प्रव रूप न रेखं जोगी को कैसा डर होए रूख बिरख गृह बाहर सोए रहो निरपो जोगी निरंजन त्यावे अन दिन जागे सच लिवलावे सो जोगी मेरे मन पावे काल जाल ब्रह्म अग्नि जारे जरा मरण गत गर्व निवारे आप तरह पितरी निस्तारे सतगुर सेवे सो जोगी होए पैर च रहे सो निरप होए जैसा सेवे तैसो होए नर ने केवल निरपो नाओ अनाथ नाथ करे बल जाओ पुनर्प जन्म नाही गुण गाओ अंतर बारे को जाने गुर कै शब्द या पछाणे साचे शब्द दर निशाने शब्द मरै ते निज करवासा आवे न जावे चूके आसा गुर कै शब्द कमल परगासा जो दिसे सुहास निरासा काम क्रोध बिक भूख प्यासा नानक विरले मिले उदासा गौड़ी महला पहला ऐसो दास मिले सुख होई दुख विसरे पावे ससोई दर्शन देख पाई मत पूरी अड़सठ मज्जन चरण धूरी राहो नेत्र संतोखे कलिव तारा जे वा सूची हर रसारा सच करनी अभियंतर सेवा मन तिपता स्याला का पीवा जय जय देखूं तें तें साचा
बिन बूझे झगरत जग काछा गुर समझावै सो जी होई गुरमुख विरला बूझे कोई कर कृपा राखो रखवाले बिन बूझे पशु पए बिताले गुर कहया अवरणी दूजा किस को दे करूं अनपूजा संत इस प्राप्ति पवन तारे आत्म चीना सो तत् विचारे साच हृदय सच प्रेम निवास प्रणवत नानक हमता के दास गौड़ी महला पहला ब्रह्मे गर्भ किया नहीं जानिया वेद की विपत पड़ी पछतानिया जय प्रभ सिमरै तही मन मानिया ऐसा गर्भ बुरा संसार है जिस गुर मिले तिस गर्भ निवार है राहो बल राजा माया अहंकारी जगन करे बो पारे अपारी बिन गुर पूछे जाए प्यारी हरी चंद दान करे जस लेवे बिन गुर अंत न पाए अपेवे आप लाए आपे मा देवे दुर्मत हर नाकस दुराचारी प्रभ नारायण गर्भ प्रहारी प्रहलाद उधारी कृपा तारी भूलो रावण मुगध अचेत लूटी लंका सी समेत गर्भ गया बिन सतगुरु हित सैस बाहो मद कीट मै खासा हर नाकस लै नखो विदासा दैत संघारे बिन भगत व्यासा जरा संध काल जमन संघारे रक्त बीज काल नियम विदारे दैत संघार संत निस्तारे आपे सतगुरु शब्द विचारे दूजै पाए दैत संघारे गुरमुख साच भगत निस्तारे बूढ़ा दुर्योधन पथ खोई राम न जाने करता सोई जन को दुख पचै दुख होई जन मेजै गुर शब्द न जानिया क्यों सुख पावे परम पुलानिया एक तिल पूले बोर पछतानिया कंस के चांडूर न कोई राम न चीने अपनी पद कोई बिन जगदीस न राख्या कोई बिन गुर गर्भ न मेटिया जाए गुरमत धर्म तीर झर नाए नानक नाम मिले गुण गाए गौड़ी महला पहला चूआ चंदन अंक